FM बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि तदनुसार 28 मई सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है और आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम था अकेले हम अकेले तुम।

आप सुन रहे हैं नीरज श्रीधर और तुलसी कुमार को। फिल्म का नाम है बिल्लू बार बार।

0: One, two, one, two. Here we go, baby, baby.
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
5: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
5: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
5: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
5: बस
4: बस
5: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दिल करे तुझ पे ये दिल मरे बोलो बोलो क्या करे जाने जा दिल करे तुझ पे ये दिल मरे बोलो बोलो क्या करे जाने जा मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा तू मेरी दुनिया से है क्या।

0: डोली डोली डोली डोली दिल मेरा डोली डोली शांत हुआ बोले बोले नाम तेरा डोली डोली डोली डोली दिल मेरा डोली डोली शांत हुआ बोले बोले नाम तेरा
1: ओ कातिल लेके दिल ओ कातिल लेके दिल जाती है कहां।

0: तरार फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति को।
1: देखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं।

0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम फिर ना मिलेंगे इस फिल्म में आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान को।

उलझा रहता हूँ उलझे उलझे बालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई आ जाए मेरे ख्यालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18

0: नाम लिख दो तुम अब पागल दिल वालों में।
1: हर दिल जो प्यार करेगा, इस फिल्म में आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों को। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM।

एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
3: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
3: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
3: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवानी वर्मा।
1: और जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
3: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
3: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
3: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है, इसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
3: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
3: जी चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
3: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
3: जी मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
3: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
3: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
3: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
3: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी ये बात तो है।
3: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
3: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
3: जी
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
3: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम

0: रखने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

फ्लैश कार्ड्स और पोस्टर्स का है अनोखा मेल। फ्लैश कार्ड्स और पोस्टर्स का है अनोखा मेल। टिम टिम तारा जादू एक पिटारा।

0: रंग बिरंगी पुस्तकें हैं बड़ी मजेदार, रंग बिरंगी पुस्तकें हैं बड़ी मजेदार,
1: बड़ी मजेदार।
0: कठपुतलियों से होगा मनोरंजन ढेर सारा, कठपुतलियों से होगा मनोरंजन ढेर सारा, टिम टिम तारा जादुई पिटारा।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है।
7: हा?
8: मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
7: अरे वाह।
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
7: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
8: हाँ माँ, और माँ इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
8: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सके।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं।

0: इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाले कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थी।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।
1: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
2: भारत माता की जय।
3: भारत माता की जय।
1: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
0: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
1: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। ध्वनियांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे उमंग कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। भरतपुर में कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की गई। इस दौरान यहां मेला भी लगाया गया। डूंगरपुर में शहर में ईदगाह तक जुलूस निकाला गया और सामूहिक नमाज अदा की गई। इसी तरह भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि CBSE की 12वीं कक्षा में अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र की कोई भी शंका अनसुलझी न रहे और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब CBSE ने देश में ऑन स्क्रीन मार्किंग को लागू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। ये रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में 1 से 30 जून तक बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान होटल, ढाबों, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल तथा अस्थायी बस्तियों में रह रहे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए इंडिगो आगामी जुलाई माह से 2 नई उड़ान सेवाएं शुरू करने जा रही है। किशनगढ़ को दिल्ली और नोएडा से जोड़ने वाली इन नई फ्लाइट्स के शुरू होने से अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर और आसपास की बड़ी आबादी को बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर BS मीणा ने बताया कि 1 जुलाई से दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू होगी। ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित की जाएगी। इसके अलावा 2 जुलाई से नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू की जाएगी। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। अजमेर जिले में आज एक स्कॉर्पियो में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। घटना बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव के पास हुई। इस घटना में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी मां, पत्नी और भांजी की मौत हो गई। चारों के शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह जले हुए मिले। हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच जारी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान सूरज आग बरसा रहा है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा दिन का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। पिलानी में 47, जोधपुर में 46.6, जैसलमेर और चूरू में 46.4, कोटा में 45.4, बाड़मेर, फतेहपुर शेखावाटी में 45, अलवर में 44.8 और लूणकरणसर में 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दोपहर बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पनिहारी।

0: परिहारी कार्यक्रम सुन नाली सगली बहनों आपरी रेडियो सखी नीतू और
1: तृप्ति भाटियारा प्यार भरा राम राम।
0: राम राम राम राम तृप्ति बहन, आपने भी
1: जी नीतू बहन बिल्कुल राम राम। और राम सुरो पहले लेजे नॉम और पछे बात करजे कौम री और कौम करजे कौकर, ये उनाड़े में सबसे मोटी है बात है।
0: बहुत बड़ी बात है
1: क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है नहीं और थे देखो नहीं के जिके सो आप बात करजे नहीं यूं लगे कि ठंडी इंसान तक तो ओढ़ है। और ए आपो बच्चों में ना बड़ों में भी थे देख लो, अगर कहनो कैसो कोई कौम है जो को ऑफिस रो कर्मचारी है तो अफसर समय तो आप लोग कौन बता सके, लेकिन सामान्यता जो ठंडो मतीरा भी लोग वे नहीं कहो जावे कि ये टाइम भी थे वो ना बुलाओ तो बे बार सोचना पड़े क्योंकि और चेहरे रा जो को हाव भाव भी नहीं वो यो हो इंसान परेशान है
0: जी।
1: और तत्ता ये मैं कह रहा छोटे बच्चों रहा क्योंकि वो गर्मी की छुट्टियों में आपने घरे बैठा है का डाडो ने बैठा है का नोनो ने बैठा है वो नो की लगे कि भैया कि घूमन जावे मैं बातों कर जाए और जैसलमेर रो जो कोनो माहौल है आप पर चले पिया नव तपा और ये नव तपे रे मोए गर्मी आप रे चरम मते है। और ए बात नीतू जी शुरू भी मेरी वास्ते की है क्योंकि अक्सर देखियो जावे कि मानसिक तौर में जब इंसान परेशान भी नहीं
0: जी
1: तो वो आप रे साथ साथ आपरे परिवार नो भी प्रभावित करे आपरे दोस्तों नो प्रभावित करे क्योंकि वो बीजा लोग समझ को नहीं पावे कि भाई बार बार ये क्यों करे जो महिलाओं है इतनी गर्मी है दिन भर किचन में तो वो लग से नवा दी थोड़ी रोटी पानी रोज ही करे पर वह की है ऐ जो को दिन भी नव तपा कहो जावे कि साल रा सबसे ज्यादा जो नव गर्म दिन है सबसे ज्यादा जिकिन कभी एक वे गर्म एक वे उबाल ओ ऐ दिन वे। तो अगर प्रकृति है नहीं वो में कोई चीज है तो मानव वो सो अप्रभावित हो कौन रह सके थे भले कुछ भी कर लो अगर मौसम में ही ऐडी चीजा चल रही है नहीं तो मन मस्तिष्क में भी ओह आप ओह और जिकिनो कह जे कि आप अनमयस्कता कुछ अच्छो नहीं लगनो चिड़चिड़ोपन रह से तो जरूरी है कि जो को भी श्रोतागण ये बात में सुने प्यानी वो जब भी कैसो बात करे और सोमलो इंसान बेवजह गर्म है तो समझ लो कि भाई नव तपा है घणो माहौल गर्म गर्म रह से तो कोई अड़ी ज्यादा जरूरी बात है नहीं तो को नीतू बहन नौ दिन बात कर ले सो
0: जी पर देखो तृप्ति बहन है नौ तपा है नहीं तो प्रकृति बनायो भी ये वास्ते है कि ये नौ तपा में ना जो जो कीटाणु भी जावे नहीं वो ये नौ तपा में ना
1: पूरा समाप्त हो जावे
0: चाहे वो बीमारी का कीटाणु है तो चाहे फसलों ना नुकसान पहुंचाने वाला टिड्डी दल है और जो को जीवाणु वगैरह भी वो अगर ये नौ तपा नहीं हुए नहीं तो नष्ट को नहीं हुए और अपार वास्ते बहुत ज्यादा नुकसान दे हुई। तो ऐ चीज भी प्रकृति देखो नहीं आपने बनाई है तो आनो भी जरूरी है पर हाँ यो है कि जो थो कहो नहीं कि ये टाइम में ना थोड़ो आपरे मन ना नहीं शांत रखनो और हो सको जितो तो गर्मी में बाहर निकले नहीं तो बढ़िया
1: सबसे बढ़िया है
0: क्योंकि हण जड़ी गर्मी पड़ रही है नहीं तो वो में ना आपरो बचाव करनो बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ
0: अगर बचाव कर सो तो आप ये गर्मी से बचोड़ा रहे सो बीमार को नहीं पड़ो और घर परिवार में भी देखो नहीं पछे एक जड़ो आदमी बीमार पड़ जावे नहीं तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जावे रो। तो ये वास्ते आप रो और आपरे परिवार रो ध्यान रखो और जितो हो सके तरल पदार्थ लेवा नहीं खाने रे मैंने बात करो आप तो देखो पेय पदार्थ जितना भी नहीं वो सब बढ़िया और सबसे बढ़िया है कि आप घरे बने उड़े चीजें वो पिया भले नींबू शिकंजी बनाए पी
1: हाँ।
0: आजकल देखो तरबूज है मतीरो है ऐ सब जो चीजें नहीं ठंडे हुई और जो परी तासीर हुई नहीं जो थोड़ा गर्मी री था गर्म
1: हाँ, अंत औतरा बड़े हाँ, ब्याह तो मैं निकल से मुंडे सुवाई
0: जी तो अंतस जो एकदम ठंडा हुई तो ऐ चीजों रो सेवन करो और जितो हो सके तो बाजार रो या तरियोड़े भिनोड़े चीजें हुई नहीं
1: ओ नहीं खानी चाहिए। और उनको दिन अगर गर्मी रो है नहीं तो अपन कठिन स्थितियों भी फेस करना आवना चाहिए
0: जी जी
1: ठीक है क्योंकि सब दिन होते ना एक समान आप चाहे जड़ी चीज वह करनी और थे हमें जैसलमेर मौसम में तो ना बेंगलोर से करो कि सुवावनो रवे स्विट्जरलैंड से रवे आप ऐडी जगह क्यों हो काश ऐडी जगह बंत लेकिन हूं तो मैंने एक बात कहना हूँ 15 दिन पहाड़ और जिंदगी भी देख आई हूँ ए इतरा लोग ना अक्सर आप बोलते सुन जे कितना सोरा है लोग जो ठंडो बढ़िया मौसम वे लेकिन उमर कने कुछ अलग दुख है नहीं सब सुख केत भी को नहीं वे आपो कने मैदान है सीधी जगह है उना जीवन बहुत कठिन है बहुत ज्यादा कठिन है क्योंकि हर चीज रो ट्रांसपोर्ट रो माध्यम खच्चर वे या व्यक्ति खुद वे
0: जी
1: थोकने कितना है पैसा वे लेकिन व्हीकल भी को नहीं चले तीसरो माध्यम वे हेलीकॉप्टर तो जुको चीज थोनो 10 रुपये मिल जावे और ये चीजों थोनो 200-300 રૂપિયા ચુકવણ રે બાદ ભી ઘણી વાર કો નહીં મિલ પાવે
0: જી
1: તો એ કદે ભી ઇતરા જકો ભી મોજા વાસિંદા સાથી હે બહેનો હે ભાઈ હે સુણી પ્યા તો બિલકુલ આપ રી જકો મરુભૂમિ હે ઇનો કોસનો બંધ કર દો ઓર એ મત સોચો કે મો કેડા પાપ કિયા તા એડી ગરમ જગા મતે આયા હું બિલકુલ ભી ના જકે ભી જગા થે રહો ચાહે સમુંદર રે પાસ રહો ચાહે થે પહાડો મતે રહો ચાહે મેદાન મે રહો ચાહે રેત રેટીલો મતે રહો સબ કને આપરા દુખે ઓર સબ કને આપના સુખે
0: જી
1: તો જણા થનો ભગવાન બનાયો ની થનો ઉવે સ્થિતિ રે ભી ભગવાન જરૂર કાબિલ બનાયે
0: આપા દેખો ની એડી ગરમી મે રેવો ફિર ભી અપરો શરીર હે ઓ ઈરે અનુકૂલ
1: અનુકૂલ હે અપરો
0: ઓર અપર દેખો જોકો કેસ કને રેગિસ્તાની ફલ હે જોકો હણોરી બહાર આયોડી હે
1: પીલુઓરી વાહ વાહ
0: ઉમે નકી હે અપર શરીર વાસ્તે ભી બઢિયા હે ક્યોંકી ઉમે ને આયરન જી ભરપૂર માત્રા
1: હે સહી વાત હે ઓર
0: અણથે ગાંવ ગવાડ મે જાય જો ની તો જાળ ઈરો જોકો પેડ હુઈ જાળ કિયા ગઈ
1: જી
0: ઓ પૂરા તરબતર ભરોળે પડે ઓર દેખો ખાવણ રો સ્વાદ તો બઢિયા
1: આવે તો રસીલો હે
0: જી જી
1: બહોત અમે દેખો એક તો ગરમી ન્યારી ગુરુવાર ન્યારો પીડો રંગ ગુરુવાર રો વે નામ લ્યો તો પીડું રો હમે બતાવ રસ જ રસ આવે તો અમે રસ વેરી વાતો કરતે કરતે રસમય સંગીત રી ઓર દર્શક શ્રોતાઓ નો લે જાજે
0: જી જી

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देख कर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी।

0: हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देखकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तो नीतू जी, गीत तो सुनवायो अपने श्रोताओं ना। और जो का वो गर्मी की बात कर रहा था, तो देखो मैं बात तो गर्मी है चाहे सर्दी है, कौम तो अपन आप करना ही जाए
7: जी,
6: है नहीं? तो कौम रे क्रम में गर्मी की जो छुट्टियां है उबरे में बच्चा अक्सर अमू जिया करे, ठीक है? और थोड़े दिन तो हमारी बात तो बढ़िया लगे, लेकिन एक कहावत है कि हमेशा पाड़ो सिरो बच्चों भलो लगे, क्योंकि थोड़ी देर आए खेलने भूल जावे। दिन भर जो बच्चों की चंचला ही नहीं, वो माए तोरा लगे कि मथो दुखी भी हो। तो कुछ ना कुछ ऐडी गतिविधि होनी चाहिए कि छुट्टियों रो एक कहवे नहीं सदुपयोग वे
7: जी,
6: कि लगे कि नहीं ए 2 महीना मोरे वास्ता कुछ रिजल्ट गिविंग वे। तोरे अनुसार की ऐडी चीजें हो सके कि भाई बच्चा भले डाडोने नोनोने जावे चाहे घूमन जावे, पर कोई ऐडी एक्टिविटी वे ताकि लगे कि मैं यूज की हुए
7: जी। तृप्ति बहन था बहुत बढ़िया बात कही कि यहाँ छुट्टियों में ना बच्चा की है थोड़ा दिन तो ठीक है, खेल खेला है कोई, लेकिन पछे वो अमू जन लागे कि हमें और दिन को कर निकले।
6: हाँ।
7: तो ये दिन निकालने वास्ते वैसे तो हाँ आप देखो कि पर जैसलमेर में भी आजकल समर कैंप चल रहा है, जिसके मैंने बच्चों ने तरह तरह की गतिविधियां सिखा
6: सही है,
7: चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हुए, चाहे जूडो कराटे हुए, चाहे डांस हुए, मेहंदी है, मतलब संगीत है, अलग अलग तरीके रहे। लेकिन वो भी देखो हफ्ते 10 दिन रहो,
6: हफ्ते 10 दिन की होगा तो फिर 2 महीना कराओ, लेकिन टाइम के तुले से 1 घंटो
7: जी
6: 2 घंटो 24 घंटा कद निकले पछे का टीवी का मोबाइल का सुता रहो।
7: तो मैं थाने बताऊ नी
6: जी,
7: तो यहाँ छुट्टियां सदुपयोग अपो तो देखो की करता कि अपो डाडो ने नोनो ने जाए कि छुट्टियां बिता देता, या अपो घरे अपोरी बुआ वगैरह आ जाता
6: आ जाता
7: तो अपो वो खेलता वो टाइम। देखो न तो अपर कने तो टीवी रो चालू हो तो न मोबाइल तो हतो ही कोनी, और अपो की है घर आला खेल खेलता, बाहर गली रे महीनो गेल मतलब घना एडा खेल हता जो आपो खेलता। लेकिन आजकल बच्चा वो सब सु दूर हो गया, वो ना ध्यान भी कोनी के सतोरियो केनो केवी के
6: गिल्ली गड्ढा केनो कवे
7: गड्ढा केनो केवी गुल्ली डंडो केनो के वो ध्यान ही कोनी,
6: छापो में कौन समझे, लाइटर आए गया में
7: पहले देखो वो था जो छापो बाद गए तो माचिस रे जगह अलग अलग तरीके रे डिजाइन होते वो ना काट काट के छापो
6: छापो करता उस्ता चंगा
7: जी
6: ओंबी का बेड़ा करता।
7: तो देखो घना ही गेम हता पर कने तो हाणा अपा बच्चों नो वो सब चीजों से अगर अपा वाकिफ करवाऊ नी उन बताऊ कि देखो मो मोरी छुट्टियां कोकर बिताता था तो थे भी यहाँ करो कोशिश करो थे खेलन दी। तो देखो वही सुखी है तुम्हारे मानसिक जो को संतुलन की नी आजकल फोन में ना बड़ा मानसिक तनाव घेर दे रहे, तो वो फोन छोड़ से नहीं तो यहाँ चीजों ने खेलन में ना भी वो बहुत कुछ सीख जा से, और साथ में ना अगर वो बाहर जो पकड़े दौड़ना डम्मा खेलो डम्मा खेलो या गिल्ली
6: डंडा कलर कलर वाटर कलर कौन सा कलर
7: तो वो में की अपो दौड़ भाग कर सो नी तो थक सो वही सुखी है जो पर शरीर है नी वो एक तरीके से फिट रहे से। जब से तो देखो योगा टीचर हो तो खुद ना ज्यादा ध्यान है कि ये बारे में अगर आप जितनी मतलब आप शरीर ना हिला सा डुला सा तो आप शरीर की लचीलो बन से, और आज मोटापो जो है वो अपने नजदीक भी को नहीं आया, क्योंकि आजकल देखो टाबर बैठा बैठा रहे भी तुम्हारे शरीर में ना मोटापो घर

0: कर ले वीरू।
1: सही बात कही बिल्कुल, थोड़ी बात अक्षरशः सत्य है कि पुराने की तरफ लौटो, आप पर एक नहीं के भाई आप जड़ो ना मत बोलो, ठीक है। तो अगर मैं कोई हॉबी क्लास, मैं सोचे कि वहाँ हॉबी क्लास भेजी, कोई भी हॉबी क्लास 2-3 घंटा, ये सब अधिक बड़ी को नहीं हो सके नहीं, और वो सब अधिक बड़ी हो कौन सके, और थोनो लगे घर खावे पियो, टबरों लगे मनो घर खावे, थोनो टबर बैठो डिठो मन सुहावे को नहीं, और जो घर में नहीं वे तो भी आप जिये मुझे क्या ठानी की करे, जो मुझे आपो कितना रुपया खर्च कर सकसो, मतलब लोग थोड़े बच्चों ने संभाले और वास्ते आजकल माँ बाप मुंह मांगी कीमत देने तैयार हो चुकी है जी। और एडो नीतू जी, दुनिया में कोई प्राणी को जिके कोई ज्ञान नहीं है, के में की भी के में की ज्ञान भी एक उन्हें ज्ञान जो को दिखे उज भी। अगर कोई लुगाई आपरे घर में 50 लोगों को खानो फटाफट बनावे तो की वो में टैलेंट को नहीं की, तो ऑफिस जाओ उन्होंने लुगाई हुकम थोड़ी ना कर सके, तो ए भूल जाओ कि थोड़े छोरो है या थोड़े छोरी है, पहली बात तो दिमाग से निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी।
1: हमें बात है इंगेज करने की, तो ए नव तपा है गर्मियों है, मुझे एक बात बताओ कि पहले नव तपा को ना था, आजकल जो तो वृक्षारोपण हो ही नहीं, पहले आप और बचपन में गिरा धोबी को नहीं अंतो, और सिर्फ एक सुविधा थी कि घर चिवाड़ हो रहा था तो परसाल कोठा गर्मी को लगती थी, लेकिन चौक में यो तावड़ा होता था अपन यो गर्मी लगती थी, और कद टाबर गर्मी रे लारे घर में कद टाबर बैठी आंता चप्पल टूट जाता था तो भी टाबर पगियो ग्रोन अपनी भारी पूरी लेवता था,
0: एसी कूलर भी कोनी आता
1: कोनी अंता कुछ को अंता, और आजकल भगवान की कृपा से हर घर में एसी नहीं तो कूलर जरूर है
0: जी।
1: ठीक है, तो छोटी छोटी बातों है लेकिन कॉमरी अंधारे कोशिश करो 4 बजे उठन री, नी 5 बजे तो उठ जाओ
0: जी।
1: क्योंकि देखो शरीर नो 8-9 घंटे री नींद चाहिए, बिल्कुल सही है, अगर ते 5 बजे उठ जाओ नी तो 12 बजे तक तो कवे जेड़ो कॉम सब निबड़ जावे, 12:05 कूलर आगे बैठ जाओ, बच्चों को बैठ जाओ कूलर आगे, लुगाया भी अगर अंधारे उठ जासे नी, और कोई जरूरी को नहीं गर्म नाश्ता बनाओना, रातों की ठंडी रोटी ना आप दही सो अचार सो भुजियों सो कोई साग सो लौंजी सो कौनजी सो खाए सकजे, गर्मी के वास्ते जो रातों का जो फुलका वे उनते सुबह नाश्ते में कर सको, सिरौन हो जावे और बाद खानो बेगो बनाए लो, और गर्मी में तो बार बार गर्म करन और भुगो ही को नहीं
0: जी,
1: बेगी आप चौको निपटाए रखो, फ्रिज में 4 तरह चीजों भर रखो, दे पारे 12 सुबह बैठो छाछ पियो, 2 घंटे बाद लस्सी पियो, 2 घंटे बाद ओमरस पियो, सिकंजी पियो, तरबूजा सुधारो, फ्रूट खाओ, 5 घंटा यो निकल, ये 5 घंटों नो ऐड़ा बनाओ कि थोड़े दिन रा सर्वश्रेष्ठ 5 घंटा है
0: जी।
1: ठीक है, तबरों ले अगर छोरियो है तो जुको बच्चा मोबाइल को नहीं छोड़े, कुछ बच्चा वे के मोबाइल हमें क्यों अग्रेसिव हो जावे, अगर मोबाइल वो से ले लियो जावे तो वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करा दो सबसे बढ़िया, फोन तो जो से जो हमें अगर ऑनलाइन जो को सीख से नहीं, भले ऑनलाइन कुकिंग क्लास में, ऑनलाइन कुछ ड्रॉइंग री क्लास में, पेंटिंग री वे, म्यूजिक री वे, वो चीज ऑनलाइन सीखने के बाद और मिली होमवर्क तो वो नो घर में हो जिसे ट्राई करनी पड़ से, तो वो जो अपवार मिल जासे नहीं तो कॉम मैं टाइम अपने आप धक्को लग जासे, तो 12:05 वो घर से निकलना भी को नहीं, और एक क्लास भी हो गई, और ज्यादातर जो भी ऑनलाइन क्लासेस है वो लोग दे पा रहे डैमेज करवाए ताकि दे पा रहे सदुपयोग है, और घर में जो लोग बैठे ही जाए और भी यूज हो जावे, पछे घर में रोटी जी मनख भी देखो धक्का टूटा घर में आराम करे बेसन खावे ते कैरम बोर्ड ले बैठो नहीं, सारो परिवार भेड़ो मिल खिलो
0: जी,
1: जब आदमी भी कोई चीज में इंक्लूड हो जावे तो टबर सस्ता बैठे लुगाया निकल टबर ताबे रखन वे, और आपो भी जब खेल सो तो आपो ने भी उत्सुकता हो से कि अरे यार सब आदमी और टबर खेले पिया, आपो चौके में बैठा हो तो आपो आपे भेगा उठ सो और आपो चौको भेगो निपटा सो ताकि 4-5 घंटा एंजॉय करे, बीच में 1 घंटो खाए लो फुपकारो, 5 घंटा सुई जे भी कुनी, 5 घंटा खाई जे भी कुनी, 5 घंटा खेली जे भी कुनी, बीजी बात लुगाए हुए मोरी कोई ना कोई पसंद री फिल्म होती है उसे जो को आपने बचपन में वो अधूरी छोड़ दी उसे मुँह भी कदे जोईस है नी, कोई ड्रामा आयो आयो उसे जिकर अगलो एपिसोड आपको नहीं जो पाया हो जे कि हमें टाइम ही कौन मिली हो, आपरी यादों नो आपरी ख्वाहिशों नो पच्छो जगाओ, और अगर हॉबी क्लास नहीं ज्वाइन कर सको तो आपने घरे टीवी मोबाइल में वो गाना सुनो जो को थोड़ी पसंद रहा है
0: जी,
1: वो चीजों देखो जो को थोनो अच्छी लगी, 5-6 घंटा तावड़े चुटकियों में निकल जा से सिंजा पड़ी सब घर आड़ा भेड़ा मिल सिंजा पड़ी आरती करो सिंजा टाड़ो रात आई पछे रात आपूरी आप रही है।
0: तो देखो जहाँ तृप्ति बहन था बतायो कि भाई आप रे समय रो सदुपयोग कौकर कर सके, तो देखो आप एक गृहिणी हो और अपन भी लागे नहीं कि थोड़ो बहुत अपन कोई सायरो देवे कॉम रे बारे में ना, तो यो छुट्टियों में ना अगर अपन पर बच्चों की सहायता लो नी कॉम करण में ना
1: जी जी,
0: तो उमर भी कम मतलब बैठा रहे नहीं खाली, तो उम्र भी समय निकल जाए,
1: सही बात है,
0: साथ में अपन सहायरो मिल जाए, तो जो क्या नहीं है अपो बच्चों ना सिखाए दो। अगर अपन लड़की थोड़ी बड़ी है तो उन्हें झाड़ू निकालना सिखाए सकवाए, और अगर वो उन्हें शौक हुए कुछ बनाव चीजों भी जो बनाव शौक हुए तो उन्हें अपो सिखाए सकवाए। और देखो जब वो बच्चों सीख से नहीं और खुद बनाव की कोशिश कर से, और जब अपो लोगों ने वो खड़ा से नहीं तो अपर मन में तो संतुष्टि मिल से जो मिल से कि भाई मोरे बच्चे मोरे वास्ते है बनाए, लेकिन वे सु ज्यादा संतुष्टि हुए ना मिल से कि मैं मम्मी पापा ना इतनी
1: बढ़िया चीज बनाए बताए,
0: मैं खुद बनाई हूँ। और देखो अगर फुलको ही बनावे नहीं भले ही टेढ़ो मेढो बनावे
1: सो फर्क कौन बनाए,
0: लेकिन वे रे जो जिज्ञासा हुए नहीं बनावन वाली वे ना कदे मतलब के मना मत करो कि भाई तू बना, और जेड़ो बनावे अपा वे प्रशंसा कर सो तो आखिर दूसरी बार वो अच्छी चीज बना से। तो यही जे कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो घर में कोई दिखे कि अपा बिखेरो ओड़ो है तो उन्होंने कहो कि ए तू बिखेरो छेड़े कर, तो पछे तार वास्ते हूं ये चीज बना दी भले ओके नहीं पुनर्बलन की भी नहीं, तो जो अपा उन्होंने कहो कि मारे वास्ते ये चीज तू कर तने ये बदले में इनो मिल से, इनो में कदे पैसा वीजा नहीं देना, भले चॉकलेट बनाओ या उसकी पसंद की कोई चीज खड़ा दो या कोई पसंद की चीज दिलवाए दो, यो होवे नहीं तो वो सुखी उम्र समय भी व्यतीत हो जैसे साथ में ना अपो जो देखो पुराने टाइम में ना कॉमिक्स पढ़ता किताब पढ़ता है तो वो बच्चों ने सीखो। अगर आजकल देखो बच्चों में देखी हूँ कि इंग्लिश मीडियम में जावे तो हमारी हिंदी है नी वो बहुत
1: कमजोर
0: हो गई, तो अपो हिंदी रे भाई स्टूडेंट हो पढ़ोड़ा हो, अगर अपो उन्होंने बच्चों ने हिंदी में ना लिखनो और पढ़नो सिखाओ नहीं तो हमारी राइटिंग भी अच्छी हो जैसे और पढ़नो भी बहुत अच्छी तरह
1: बहुत अच्छे से हो जाए,
0: क्योंकि अपा नहीं है गलतियों निकाल सो कि भाई थो ए कॉमे की गलती करी हो कि अनुस्वार को नहीं लगायो कि विसर्ग को नहीं लगा, हर चीज में अपा उन्होंने बता सो नहीं तो वही सु करके नहीं उमारी जो लिखावट है ओ और जो उमारी हिंदी बोलन भी जो तरीको है नहीं वो में भी घनो फर्क आसे। तो ये छोटे छोटे चीजें है जो अपा बच्चों ने घर में बैठ के सिखाए भी सको इस उमारो भी समय निकल से और अपर भी थोड़ा काम आसान हो जाए।
1: बिल्कुल सही बात कही थो, जो तो पहली बात कही थी कि भाई आप वनो आपरे कने ले बैठ जे घर काम जो करवा जे, तो ये में भी एक चीज है कि भाई आप बच्चों की हमेशा मतलब बहुत दिमाग में तेज हो जाए ठीक है नहीं थे उनो जब उमर फायदो बता सो नहीं तो उनो चीज बेगी समझ में आवे, जो हम बच्चों ने थोड़ा एक्टिविटी बताई तो आप जो भले टेढ़ी मेढ़ी रोटी की बात जो चली जिके टाइम रोटी बना सनी तो वो ठा पड़ सके, एक सिंपल एक रोटी बनाओ भी कितो मुश्किल है और मोरी माँ 10-20 रोटियों कोकर बनाए ले तो मतलब मैं विनो अंडर एस्टिमेट कौन कर सकते क्योंकि ए एक कॉम है जो ऊन आवे मना को नहीं आवे, तो जब तक कोई कॉम हदसो नहीं कर सनी जब तक वो वे कॉम रो करण आड़े रो प्रति महत्व कौन ठा पड़े कि वो इंसान कितो थोसू आगे परफेक्ट है, ए सेम चीज आपो मथे भी लागू हुई जो बच्चों को ड्राइंग बनाई आपो कहते जे ए ताजी इतनी बढ़िया कौन बनी ए ठीक है पहले ज्यादा ठीक थी लेकिन जो को थोनो ठीक को नहीं लगती नहीं वो भी थो सुकून बनाए, तो बच्चा जो को एक्टिविटी करी नहीं कोशिश करो कि अद्धो घंटो और एक्टिविटी में भी और भेड़ा बैठो, अगर बच्चों मोबाइल में गेम खेले इनको लेवल तक पहुंच गए आपो खेल सो नहीं तो आपो के लेवल की वजह से एक सेकंड ही को नहीं खेल पाजी
0: को नहीं खेल पाओ
1: क्योंकि आपो सुकून नहीं है, तो जब थे और एक्टिविटी में बैठो नहीं तो अरे यार तो उनके हमें तू भी मेरे किचन में आ बैठी थी नहीं आ देख कॉकर बना जे तू बनाए मत सिर्फ देखे जब थे चार रोटी बना से तो कह सके हूं कर देखूंगी अपने आप के इंसान स्वभाव है, तो वो भी ए चीज गुरमय उतर से तो मन ऐसी लगी कि थोड़ी बात बहुत बढ़िया आंती कि कौम करने देखो तो थोनो करण आड़े रे प्रति उरी आपो रेस्पेक्टफुल हो जाए के ओके तो अच्छो करे, और जो गेम और खेल री बात है वो तो थोड़ी लाख रुपये री बात है कि छुट्टियों में बैठो और भेड़ा आप पुराना गेम है थोड़ा बच्चा जा पर कभी थोड़ा भी कुना मोबाइल में ए भी कुना है उन्होंने कह के तू गड्ढा खेल और कुत्तो पार कर
0: बहुत बड़ो टास्क
1: हो तो और जो हिंदी शब्दों की बात थी मो पहल की छुट्टियों मैच कॉम की मैं घर बैठी गया क्योंकि बच्चा तो अंग्रेजी रहा मारा भाई तो मो मैंने कहो कि गेम खेल जी नाम वस्तु शहर और जो नेम प्लेस एनिमल थिंग भी तो हिंदी में वो करवाया हमें वो लोगों ने लिखी जी नहीं मतलब उन्होंने ठा है कि कानपुर लिखना लेकिन वो उसे इंग्लिश में लिखी जी तो हिंदी में गेम खेल गया तो हूँ और मेरा पापा जीत गया बच्चों से झटना शब्द को निकले और जो वो शब्द गलत लिखे पाचे घर में जो हंसी मजाक वातावरण हुई तो हंसी मजाक रो घर में जो कोई छोटी छोटी अटखेली हो भी नहीं वातावरण रही हो कि वे गलती करी वे गलती करी अरे तुमने अक्षर को नहीं आयो अपने आप वरी वर्तनी और वरी भाषा शुद्ध वे तो परिवार नो भिड़ो रमन वास्ते भगवान।

0: एक गर्मी होती है, इनो वरदान समझो, इनो बिल्कुल भी अभिशाप मत समझो, क्योंकि अभी आपको कह सकते पूरे घर बिजली बड़े सारा एक कूलर में आए बैठो,
1: जी।
0: सब एक कैसे में बैठो, बेटा बेटा की कर सो, बेटा बेटा गेम खेलो, कोई पापा एक गेम, एक बार पापा री मर्जी रहो, एक बार मम्मी री मर्जी रहो, एक बार बच्चों री मर्जी रहो। और देखिए जरूर है छुट्टियों चुको कोई नहीं अभिशाप को नहीं वरदान है, हर सिक्के का दो पहलू वे ओ थे अंत में जरूर कैसो। अरे यार स्कूल खुल गया कि क्या दिन अंदा गर्मी रहा
1: जी
0: है
1: सही
0: नहीं
1: बात है।
0: जी।
1: तो देखो नी, जो था गर्मी री छुट्टियों री बात करी हो, तो देखो गर्मी गर्मी करके अपना खुद ने भी लगे कि हमें बहुत ज्यादा बातें होगी,
0: जी
1: तो थोड़ो अनि मनोरंजन भी कराऊं सखियों ना और सुनाऊं ना बढ़िया जेड़ो लोकगीत।
0: जी हाँ।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो नीतू बहन, बहनों ने गीत सुनाया दिया, जो तुम बोलियो वो जरूरी संदेश भी सुनाया दिया। हमें आगे तो रोकी आदेश है।
2: देखो आप बात घने कर ली है कि गर्मी है, ये में यहाँ करो वो करो, बच्चों की छुट्टियां हैं तो वो में भी बच्चों ने कौकर समय बिताई जाए उमरों और आराम से निकल जावे, साथ में अपनों भी सायरों मिल जावे। पर जुगो अपो की बात जद आवी नहीं तो वो बारे में हम कुछ जानना चाहवा कि अपो महिलाओं हो दिन भर काम तो करता रहे, अपनी शारीरिक गतिविधि हो जावे, लेकिन वे शरीर न भी थोड़ो मजबूत और फिट रखने वास्ते थोड़े कने कुछ फिटनेस मंत्र हुए तो आज अपनी सखियों ने बता दो, क्योंकि मन ठा है कि थे योगा टीचर हो और थोसु बढ़िया महिलाओं के बारे में न कौन जाने और कौन वो ने बतावे।
1: देखो नीतू जी, तो बात बहुत बढ़िया कही कि महिलाओं की सेहत रही और जिकी ने महिलाओं सबसे ज्यादा नजरअंदाज करी, परिवार में कैरी भी सेहत थोड़ी सी डावाडोल से नहीं तो लुगाया को ने 101 नुस्खा हो से, थोड़ो सी ये कर ले बेटा, थोड़ो सी ये कर ले, थोड़ो सी ये कर ले, पर भगवान भी नो बनाए हो एडो विजय कि आपरे बारे में लाई सोचे ही नहीं है नी। तो आपरे सेहत रो ध्यान रखनो पहली बात तो सोचना है जरूरी है, थे जेड़ो सोच सोड़ो कर सो तो ये सोचनो आपरे दिमाग में उतार लो कि खुदरे बारे में सोचनो स्वार्थपणों को नोया करे है नी। खुद सु प्रेम करनो, खुद री केयर करनी है ना, तो बेवकूफी है और ना कोई स्वार्थ निशानी है। अगर थे खुद आप रो ध्यान नहीं रख सो तो बीजो सुमित थे कौकर कर सको और लुगायो उवे उम्र में भी के थोड़ा मायत भी बुढ़ा वे तो थोनो उमर ध्यान रखना है, थे उमर घर है कौन बैठा कि हमें वो थोड़ी छोटी छोटी बात भी केयर कर सके
2: जी।
1: और आपो ने लगे कि हमें मैं जो पहले दहकुन में हूँ सब कर लेती थी, उम्र रे साथ मसल लॉस होया करे, ठीक है मैं 40 रे उम्र रे बाद 45 रे उम्र रे बाद अपने शरीर में हार्मोनल चेंजेस होया करे, ए कुछ ऐडी चीजों जो पुरुषों में कुन होया करे, क्योंकि महावारी रो आवनो ए चीजों महिलाओं में पुरुषों से अलग है, जिकड़े महावारी आवनी स्टार्ट हुई आवे सो पहले तो लुगायरी बहुत सी चीजों बिल्कुल बदल जावे पुरुषों की तुलना में। उरे बारे में देखो गर्भावस्था है या उवे से जरूरी जो भी चीजें हैं तो बड़े मोर शरीर में चेंजेस हुई, हार्मोनल चेंजेस हुई। उरे बाद में शरीर बिगड़ जावे काफ़ी महिलाओं रो तो वे सु परेशान हो जावे और घर और बच्चों की ज़्यादा जिम्मेवारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थे भी तो और भी ज़्यादा मोरा शरीर में और दिमाग में कुछ चेंजेस चले। अगलो जो को फ्रेज आप और आवे वो है जब महावारी जावनाड़ी भी, ठीक है मेनोपॉज ये टाइम भी उमरे बड़े दिमागी और शरीरी तबीयत चेंज होनी शुरू हो जाए। तो यह सबनों अगर सब ये सब मतलब कि चीज़ों के साथ साथ आप फिट रह जाए, जो आप काफ़ी लुगाया देख जाए, आप बाहर सेलिब्रिटीज नो देख जाए तो उन्होंने देखने में ऐ चीज़ है कि उन्होंने आप घर काम को नहीं करना, लेकिन जिके सु जिको अच्छी चीज़ आपने मिल सके वो आपनों ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो खुद ही फिटनेस के वास्ते सबसे पहले तो है कि 6-6 महीने में आप रो मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, नॉर्मल यूरिनरी जाँच और जो को खून की जांच, कैल्शियम आयरन ये जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप शरीर में की केमिकल लोचो वही पियो ए बाहर री रूपरेखा देखने से आपनों कदे भी कौन ठाप रहे के कहरे में। और अधिकतर भारत री अधिकतर महिलाओं आयरन री डिफिशियंसी होया करे और महावारी बाद और भी ब्लड लॉस हुई तो उमारी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जा रही और 40-45 के बाद तो हड्डियों में जो कैल्शियम है उमरी मात्रा भी कम होनी शुरू हो जावे अगर थे वेरो ख्याल नहीं रखो तो। तो अगर सप्लीमेंट आवश्यक है तो विनो लेना चाहिए, आपरे भोजन री चीजों नो उवेरे अनुसार बदलाव लावना चाहिए, जुको थोड़ो शरीर मंगी ओ विनो देवना चाहिए, साकले साकले उठने और बस चाय पीवनी एक बहुत अच्छी शुरुआत को नहीं। जो पहले आपको गर्मी की बात की तो बिरयानी रो पौनी सौंफ रो पौनी सबसे बढ़िया है आपरे वास्ते, माटकी रो पौनी बढ़िया है, मटकी रे पौनी रे मोए थे एक पोटली में इलायची नो बंद की रख सको ताकि वीरज को खुशबू है वो पौनी में भी रमे और आप जी दोरो नीवे जी सोरो है। तासीर

0: और ज्यादा ठंडी वे। साकले साकले उठने चाय नो तो पहली बात बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और चिया सीड है या तुक बलंगा है, इन और जल नो पियो। भिजोड़ा अंजीर है, भिजोड़ी किशमिश है, क्योंकि आयरन की पूर्ति एज कर से उन आप भोजन में लो, मतलब जुको थोड़े शरीर की आवश्यकता है। नाश्तो टेमो टेम करो, नाश्ते में प्रोटीन री मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं नो आयरन और प्रोटीन नो लॉस ज्यादा होया करी। आप जो को वजन है आइडियल वजन उत्तो प्रोटीन आप दिन में खाना चाहिए। और उरे बाद जो को जरूरी चीज है वो है एक्सरसाइज योगा। अगर थे योगा नहीं करना जोड़े तो कोई बात नहीं, थे रनिंग की आदत डालो, वॉकिंग की आदत डालो, टहलन की आदत डालो और प्राणायाम करो। सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, सीखो और विनो करो। तो आप रे दिन रो 1 घंटो जिकी नो बढ़ाए लो खुद रो गोल्डन आर, स्वर्ण नगरी में रवि प्या, एक सुनहरो घंटो आप रे वास्ते लो, जिके रे मोहे आप रे शरीर री रिकवरी कर सो और आप रे दिमाग नो खुद हील कर सो। मन में काल रिकी की बातों अंति और विनो कोकर थोनो दिमाग से बाहर निकालने। दिन उगते हुए नहीं लुघार आदत बुआरो फेरे झाड़ू कड्डे सबसे पहले, कि रात कवे जावे कि भाई रात भर में को लप छिड़ान कोई आत्माओं भूत प्रेत आया वे तो उठते पहले बासी दो बासी कौम, पहले झाड़ू झाड़ा झपटा कर जे नहीं तो दिमाग रूपी झाड़ू कटना बहुत जरूरी है। नहाए धोए शांत चित्त सो, एक बढ़िया खूनो और एक बढ़िया आसन लेके चुपचाप बैठ जाओ। जब रोज खुदरे साथ बैठने की आदत डाल सो नहीं, आपकी कमियों भी ठा पड़ से आपकी खूबियों ठा पड़ से। तो शारीरिक भी वर्कआउट जरूरी है और मानसिक भी जरूरी है। और बात पच्चो खाने रो ख्याल, एक सुखद नींद, अच्छो भोजन, पूरक आहार और सकारात्मक सोच, ऐसा सब अपन मिलाए के फिटनेस री और आगे बढ़ावे।
1: तो तृप्ति बहन तो बहुत अच्छी बात बताई कि भाई ये तरीके सु अगर पहले आप रो ध्यान रख सो, आप रे मन री जो को सोच है नी वे ना सकारात्मक कर सो नी, तो अपने आप चीजों सब बढ़िया होती जैसे। और बाकी थो कहो कि जो को आहार है, देखो थो बतायो कि ए चीजों लेने चाहिए, लेकिन महिला एड़ी हुई कि वो नी सबरे बारे में ना ध्यान रख से कि भाई म्यारे परिवार सदस्य है नी वो ना हूँ ए है चीजों खड़ा हूं तो उम्र स्वास्थ्य वास्ते बढ़िया, लेकिन वो खुद कभी वो चीज ना खावे कौन, भले सौ में पड़ी हो से नी तो वो ना उठाए के खावे कौन, भले घर में ना फ्रूट तो सारो लायोड़ो से मेवो हो से, लेकिन वो खुद चलाए के सब ना काट काट के दे ले से, लेकिन वो मिसो अगर एक फोंक भी खुद खाए ले नी तो पूरे शरीर में ना जरूर थोड़ी बहुत पूर्ति हो जावे, लेकिन वो कभी कौन खावे। तो ए चीज महिलाओं ने आपकी जो सोच है नी उन्हें हटानी पड़ से कि सबरो ख्याल भले ही रखो, लेकिन पहले आप रो भी ख्याल रखो, जब थी आप रो ख्याल रखो तो अपने आप पूरे परिवार रो ख्याल राखी से, क्योंकि जब तक खुद स्वस्थ नहीं रह सो नी तो थी कौकर बिजोरी तिमारदारी कर सो। तो
0: ये मैं भी एक कारण की है क्योंकि आप अपनी मम्मी ने हमेशा एज करते देखे। आप वो हमेशा दुखी पीड़ित परेशान और ओरे ओरे और आप की लगे पुराना कोट है महिला त्याग की मूर्ति है
1: जी,
0: मतलब एक अच्छी महिला को खुद ध्यान रख पूरे परिवार ध्यान रखे। तो हमें सोचन की आवश्यकता है, लुगाई ना सबनों कहना चाहे कि थो जो आप पीढ़ी से लेके आया हो प्लीज आप रे आगे आने वाली पीढ़ी ने ऐसा मत दो, क्योंकि अगर एक लुगाई नहीं तुम्हें ध्यान सुनिया अगर एक लुगाई कुछ गलत करे नहीं और नुकसान डबल भी कौकर, क्योंकि दिक्री भी आगे जाए वही काम कर से और वो दिक्रो आगे आने वाले समय में आप बहु नो आप ध्यान देखते कौन सहन कर पावे वो की कैसे म्याड़ी माँ भी कभी आप ध्यान लारे गेली को नहीं वो भी मोरो ध्यान रखे तो तू भी कर, क्योंकि वो आप बहु ना भी परेशान कर से और दिक्री भी आगे जाए आप मारी छाया बन से। तो ये कड़ी ना हमें जो अनुज रोकन री आवश्यकता है और चीजों ना बदलन भी जरूरत है
1: जी,
0: खुद रो ध्यान रखने की जरूरत है और वही संस्कार आगे स्थानांतरित करने की जरूरत है।
1: तो देखो तृप्ति बहन आज तो बहुत ज्यादा बातों कर ली हूँ और हमें घड़ी रिसु भी बताई रही कि अपर समय हो गया पूरा कार्यक्रम
0: जी,
1: तो हमें बहनों सुलेसो सीख और कर सो
0: रोम रोम रोम जी।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजे हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे पहले अंग्रेजी में, फिर हिंदी में समाचार।

0: द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद

0: और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय की सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा

0: पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बालासाहेब निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान की रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
2: कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी अपनी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बात होगी हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की, जिसकी मासूमियत, चुलबुलापन और खूबसूरत मुस्कान ने 1970 और 80 के दशक में दर्शकों का दिल जीत लिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी आंखों में मासूमियत थी, अभिनय में सादगी और मुस्कान में अपनापन। जी हां, आज का हमारा खास कार्यक्रम समर्पित है अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी।

विनया गोस्वामी का जन्म 4 जनवरी 1962 को हुआ। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। कहते हैं कि विनया की खूबसूरती और कैमरे के सामने उनकी सहजता ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर खींच लिया था। महज किशोर उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और देखते देखते वे 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। विनया गोस्वामी ने उस दौर में काम किया जब हिंदी फिल्मों में

रोमांस, पारिवारिक कहानियां और संगीत का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोलता था। उनकी जोड़ी कई बड़े अभिनेताओं के साथ पसंद की गई। उन्होंने विनोद मेहरा, शशि कपूर, जितेंद्र और अमोल पालेकर जैसे कलाकारों के साथ काम किया। उनकी अदाकारी में एक घरेलू अपनापन था, जिसकी वजह से दर्शक उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे।

0: दोस्तों एक दिलचस्प बात यह है कि बिंदुआ गोस्वामी ने बहुत कम समय में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन जितनी जल्दी वो फिल्मों में आई उतनी ही जल्दी उन्होंने फिल्मों से दूरी भी बना ली। कई लोग मानते हैं कि अगर वो लंबे समय तक फिल्मों में सक्रिय रहती तो वो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती। उनका निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने अभिनेता विनोद मेहरा से विवाह किया था, हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता से शादी की। जेपी दत्ता वही निर्देशक हैं जिन्होंने बॉर्डर और एलओसी करगिल जैसी बड़ी फिल्में बनाई। शादी के बाद बिंदिया ने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मों से दूरी बना ली।
1: सुनिए
2: कहिए
1: सुनिए
2: सुनिए
1: कहिए

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए।

0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
1: इस खूबसूरत गीत के बाद अब आइए बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। और ये हमें मैसेज भेजा है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता ने, और ये लिख रहे हैं कि उत्तम बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाने जानकारी और रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो दिग्दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं। आप हैं नाहर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामु देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साथ हो। और आप हैं इंद्रभान सिंह, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं बताया है। ये मैसेज हमें मिला है कुमार खेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम का, और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। आप हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार जी हमें अपना संदेश भेज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विंध्या गोस्वामी के ऊपर ये इन्होंने अपनी बता रहे हैं कि अगर आप चर्चा कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मशहूर लोकप्रिय खूबसूरत अभिनेत्री विंध्या गोस्वामी और उनकी पहली फिल्म जीवन ज्योति की, और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया, गोलमाल, खट्टा मीठा, प्रेम विवाह, दादा, उन्होंने 14 साल की उम्र में फिल्म फेयर में जगह बनाई और विनोद मेहरा से पहली शादी की, वो ज्यादा दिन नहीं टिकी और दूसरी शादी उन्होंने निर्देशक जेपी दत्ता से की और कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। तो आपने भी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता, संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भारत मक्कड़, कमल साहनी पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से अपना मैसेज हमें भेज रहे हैं। फारूक अली खान ने भी हमें अपना मैसेज भेजा है। हीरामणि वर्मा दत्रे की भाटापारा से अपना संदेश भेज रहे हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजवीर सिंह, कुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, बाबी डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी शिद्दत से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं। और आप सुनते हैं एक बहुत

तारे भी होंगे लेकिन हमारा बिना लगेगी जब जब रूहानी आग लगाएगी रुदमत का।

बिंदिया गोस्वामी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सहजता। वे बिना किसी बनावटी बन के अभिनय करती थी। उनकी मुस्कान और मासूम चेहरा दर्शकों को बहुत आकर्षित कर लेता था। वे उन अभिनेत्रियों में शामिल रही जिन्होंने ग्लैमर के साथ साथ सादगी को भी पर्दे पर खूबसूरती से निभाया। दोस्तों, 70 और 80 का दशक हिंदी फिल्मों के लिए बेहद खास था और उस दौर में कहानियों में परिवार का रिश्तों की मिठास थी और गीतों में दिल की भावनाएं। बिंदिया उसी दौर की प्रतिनिधि अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर मासूमियत थी और अभिनय में सच्चाई। यही वजह है कि आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

0: पल जो ये दान वाला
1: है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बिंदिया गोस्वामी फैशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन

टाइमिंग में भी रुचि रखती है। हिंदी फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के बाद उन्होंने अपने परिवार और रचनात्मक जीवन को समय दिया। हालांकि वे लाइमलाइट से दूर रहीं, लेकिन उनके चाहने वालों ने उन्हें कभी नहीं भुलाया।

तो दोस्तों ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की उस मासूम और खूबसूरत अभिनेत्री की जिसने कम समय में ही दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। कुछ कलाकार अपने अभिनय से नहीं बल्कि अपनी सादगी और मुस्कान से याद रह जाते हैं और बिंदिया गोस्वामी उन्हीं कलाकारों में से एक है। अब मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी हस्ती और नए किस्सों के साथ। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है, इसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात
2: परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रम।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से यार। कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा से रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं।
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं
1: जी।
0: देते हैं।

0: हाँ तो सुनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये,
1: जब है ना जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही इतना आनंद की अनुभूति होती है ना, फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है। वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुशी खुश रहते हैं हमें ना उनके काम में,
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए, या हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: चेलम्मल जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, जैविक तरह की उन्होंने खेती की।
0: बिल्कुल, और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं, जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
0: कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेलम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
1: और चेलम्मल ने अपने खेत में हरी खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेलम्मल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
0: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहता है कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी,
1: देखिए
0: तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से है। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं, और श्रीमती चेलम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार, और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
0: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, वो कला को अपने निखारना चाहिए।
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल,
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: जीवन से भरी तेरी आँखें।
1: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है।
2: बिल्कुल, वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के
1: कि देखिए कभी कभी ऐसा था ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए।
2: ये तो होता है, ये तो होता है।
1: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है।
2: उन्हें को लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर आवाज अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा।
1: जी, एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगते हैं, माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है, कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं, इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत कर

0: झूठी तारीफ करनी पड़े तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए।
1: क्या बात है,
0: एक हमारे आगे कर सके
1: जी। एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखे। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए। उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरह की जो चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है। उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है, और परिणाम की वजह अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो, की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
1: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपनी साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें, तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है।

0: आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए ना कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताएं कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक को देखिए तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है उनकी आदत भी ये होती है कि वो सोचते हैं हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती थी, आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी की जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे की लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदि हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं। उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर पड़ता है।
0: और ये जो गेमिंग जो होती है ना इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं, पानी में गिर

0: जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट हाँ। अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने,
0: सुनते हैं गीत।

0: सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
1: अच्छा जी मैं हरी चलूं
0: सबकी यारी मेरा दिल जला।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे,
1: अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना,
0: देखी सबकी यारी में।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: सकोगे समझे
0: हाँ समझे
1: अच्छा जी मैं हरी चलूँ
0: देखी सबकी यारी में।

0: है दीदी?
1: हो रहे ना किसी के
0: क्या करना है दीदी?
1: अरे हो रहे ना किसी के
0: अंदर है तो याद करोगे समझे
1: समझे।
0: अच्छा जी मैं हरी चलू जाना
1: बेटी सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
2: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जाकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
3: बहुत ऐसे गेम आ गए।

0: खतरनाक
1: जी।
0: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
1: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
0: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
1: नहीं, पर अगर हमें बहुत ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं, पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा का,
0: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
1: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
0: की रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब
1: धीमी हो गई,
0: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है, कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
1: जी।
0: तो कभी कभी होता है ना कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
1: यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं जिससे स्पीड,
0: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है, थोड़ी दूर तक है तो वो नेट का आसानी से उपयोग कर सकते हो, वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
1: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
1: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे एक ही टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
0: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं जिससे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
1: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें, यदि 2 एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल इन्हें आड़ा रखें, ये सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर अगर ज्यादा चीजें चलानी है तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
1: आप एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो इससे ये करता, ये इसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदले, या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें, और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उन्होंने कहा कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छोड़ गई है। क्या बात है, तो बधाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, सो ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे, और अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती आज की मुलाकात
1: आज की मुलाकात बस
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।

हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना। तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारत।

0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
0: जी हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
0: जी हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
1: अरे वाह क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते, तो जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में से इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार का खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
1: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
0: जी जी अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप सुनते हैं
1: जी,
0: हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
1: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
0: वो तब भी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, सुनान खेर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टाइम में जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चलो तरफ है।
1: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
0: जी जी वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, बातें शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक आप बता सकते हैं।
1: तो हमारी पक्की लिस्नर है,
0: यही जान लीजिए हम इस समय 36 साल के, मान लीजिए हम 6-7 जब से हम बहुत संभाले हैं, सबसे सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
0: जी पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली बेस मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, फिर हमें गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती में सब बचता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दुकान हम लगाने लगे,
1: काम कहाँ करते हैं?
0: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
1: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये कोना ना। जीना है तो हंस के जियो,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो ममता किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम। खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से खेलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: तो मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीले हैं, चारों तरफ झीले फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीले हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है, यहाँ मस्तान बाबा की दरगाह फतेहसागर के आसपास और एक अम्बावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, तो पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीले भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देखकर जाते हैं। तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने, चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

ये उल्फत की निशानी है, ये आंसू और ये आहें मोहब्बत की है सारा दे।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा की शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ।
1: अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पे?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उसमें क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी भारतीय के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में, आपकी बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है?
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का।
1: बिल्कुल
0: दीदी।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायादित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी सुन पाऊँ तो मिस हो जाता तो फिर वापिस यूट्यूब पे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागी।
1: छायागी में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या कि चलो थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन से गीत सुनवाए आपको?
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीत बद किया एक गाना सुनना चाहूंगा। जोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: धाए कसम लगे उसको मेरी जो जाए सितम मेरे दिल पे जो धाए कसम लगे उसको मेरी जो जाए
1: ना ऐसे

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विवेक भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: बस बढ़िया है, यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लू बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो उस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष है ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाएं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी पूरे हुए हैं मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आप?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते हैं ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा सिलाई करते हैं, घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक नहीं है
0: भाई, मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बेग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भरा था, गेहूँ उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और इससे।
0: अच्छा जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी, जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है, पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं।

0: चाहिए, साए में सिमटना क्या एक पल के मुसाफिर के, ना मंजिल पटना क्या हट हुए सदमों से, हट हुए सदमों से हरी रहे की राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं।
1: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
1: स्वागत है आपका फिर तो।
2: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: नाम मैडम जी सरोण कुमार रणवा, गाँव हीरावाली जिला फाजिलका पंजाब से।
1: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
2: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
1: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
2: हाँ जी,
1: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
2: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चली है, बाकी धान का पोत बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
1: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
2: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
1: हाँ।
2: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
1: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
2: मेहनत तो है मैडम जी।
1: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
2: मैडम जी हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं
1: बाजरी के आटे की।
2: हाँ, बाजरी का मोठ का।
1: अच्छा, मोठ का भी?
2: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो साथ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है चाने के लिए।
1: अरे वाह, क्या बात है, तो रात को

0: ऊँट का दलिया बना देते हैं, उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ।
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी रवार की फिल्म से सुना दे रहा है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

से आवाजों के साथ से धड़कन की आवाज से आवाजों के साथ से होठों पे ये सरगम के फूल खिले होठों पे ये सरगम के फूल खिले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नीमे श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, जिससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, सैटेलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, या नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 तक को हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें

0: जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। मिलित भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया और शुक्रिया मिलित भारती जो आपके सहारे हम 26 वर्ष तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और मिलित भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने मिलित भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं। उद्घोषक सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
0: जी,
1: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
1: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को
2: आज।

0: राज की बात बताएं, हाँ राज की बात बताएं, समझी खुश किस्मत है, लक्ष्मी है संभन जी, जिनसे घर जन्नत है।
1: राज की बात बताएं, समझी खुश किस्मत है, लक्ष्मी है संभन जी, जिनसे घर जन्नत है।
2: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार
3: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावट तहसील खिड़किया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
2: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
3: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
2: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
3: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल।

0: वगैरह है।
1: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में
0: मैडम? अभी गेहूँ के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, अच्छा लग रहा है।
1: चलिए अच्छी बात है।
0: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
1: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
0: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
1: क्यों?
0: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
1: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
0: कार्यक्रम बंद हो गए थे भारती से, तो धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
1: चलिए लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
0: जी जी मैडम,
1: हमारे श्रोताओं से हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
0: आम्रपाली फिल्म का नीलगगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
1: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
0: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी की आवाज के साथ।
1: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला काठागाम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके।

0: टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, सब मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छी हूँ भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैं सिलचर में रहता हूँ।
0: माँ, मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे, बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे, क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ऑनली 10 कम्प्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडू में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक हैं?
0: हाँ हम ठीक हैं। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 के ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी। ईमानदारी हर चीज में, जो ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बढ़ना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: हमें सुनना है गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छलिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है।
1: तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है,
0: अच्छा
1: तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-2462-28670-288 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 02240024662 साथ ही 02228670288 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो
2: फरमाइश।

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हमने रिले किया था मुंबई के आकाशवाणी केंद्र से। अब प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

युवनी युवनी सुनने वाले सभी साथियों को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम आपसे जब भी मिलते हैं तो किसी न किसी विषय पर चर्चा करके अपने और आपके और अपने दोनों के नॉलेज को बढ़ाते हैं। आज जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है हमारी पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि इस देश के लाखों आम आदमी और औरतें जो छोटे मोटे व्यवसाय चलाते हैं, अर्थव्यवस्था में उनके बड़े योगदान के बावजूद औपचारिक संस्थागत वित्त के दायरे के लगभग बाहर गए हैं। मुद्रा वंचितों को वित्त पोषित करने का हमारा इनोवेशन है। यह शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMAY, ये 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करके गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सहायता करने के लिए वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक की घोषणा की है। यह सीमा 24 अक्टूबर 2024 को प्रभावी हुई है। इस घोषणा ने एक नई ऋण श्रेणी तरुण प्लस भी पेश की गई है, जो विशेष रूप से

के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है, जिससे हमारे 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड अब इन बढ़े हुए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करेगा, जो भारत में एक मजबूत उद्यमशीलता इकोसिस्टम को पोषित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड भारत सरकार द्वारा PMMY के तहत माइक्रो यूनिट उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त पोषण के लिए स्थापित एक वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचितों को वित्तीय समावेशन और सहायता प्रदान करना है। PMMY ने लाखों लोगों के सपने और आकांक्षाओं के साथ आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना भी दी है। भारत एक युवा देश है जो जोश और आकांक्षाओं से भरा हुआ है। भारत के विकास के लिए इस अभिनव उत्साह का दोहन करना महत्वपूर्ण है, जो देश के आर्थिक इकोसिस्टम में मौजूदा अंतराल के लिए नए युग में समाधान प्रदान कर सकता है। भारत में उद्यमशीलता की अव्यक्त क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता को समझते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थानों जैसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थान आदि द्वारा 20 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाते हैं। यह ऋण विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रों और कृषि में आय सृजन के लिए दिए जाते हैं। मुद्रा ऋण अब 4 श्रेणियों जैसे किशोर, शिशु, तरुण और तरुण प्लस के तहत प्रदान किए जाते हैं। यह उधारकर्ताओं के विकास के चरण और वित्त पोषण आवश्यकताओं को दर्शाती है। यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि भारत में उद्यमिता के परिदृश्य को बुनियादी तौर पर बदल दिया जाए, जिससे वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने इस योजना ने अनगिनत नए उद्यमियों को नए व्यावसायिक विचारों को साकार करने में सक्षम बनाया है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को भी सशक्त बनाया है, आर्थिक उत्थान के अवसर पैदा किए हैं और अधिक समावेशी विकास के माहौल को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे ऋण सीमा 20 लाख रुपए तक बढ़ गई है, PMMY जैसे छोटे व्यवसायों को पोषित करने और अधिक न्याय संगत तथा समृद्ध भविष्य की ओर देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा देश प्रगति की राह पर बढ़े आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने भी इसे एक कह सकते हैं कि पोषित किया है, कि अभूतपूर्व स्थिति के लिए विशिष्ट राहत के रूप में तैयार किया है। इसका उद्देश्य ऋण की लागत को कम करके पिरामिड के निचले हिस्से में उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय तनाव को कम करना है। इस योजना से लोगों को जो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ संकोच के कारण कि हाँ इतना हमारा पोषण, इतना वित्त पोषण अगर हमें मिल जाता तो ये काम हमारा हो जाता, या इतना हमें अगर कहीं से हमारा कहते हैं ना कि लेन देन हो जाता तो कोई काम शुरू करना इजी हो जाता, तो उसी तरीके से भारत सरकार ने यह काम शुरू करके लोगों को एक नई राह दिखाई है और लोगों के जीवन में एक उमंग की लहर सी पैदा की है। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लू लगने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक, सबसे पहले लू है क्या? जब हम अधिक देर तक तेज धूप में रहते हैं या शरीर में पानी की कमी हो जाती है और शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रहता है, तो शरीर में पसीने के माध्यम से तापमान को संतुलित किया जाता है। पानी की कमी के कारण यह प्रक्रिया रुक जाती है। शरीर का तापमान खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है। यह स्थिति लू या हीट स्ट्रोक कहलाती है। इसके लक्षण हो सकते हैं कि बहुत देर तक कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है, तेज सिर दर्द होगा आपको, अत्यधिक थकावट और कमजोरी फील होगी, दिल की धड़कन आपकी तेज हो जाएगी, त्वचा लाल हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और आपको बेहोशी जैसा फील होगा, पसीना आना बंद हो जाएगा, आपको अनईजी सा लगेगा, है ना? तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको लू लग चुकी है, हीट स्ट्रोक ने आपको अपनी चपेट में ले लिया है। और अभी ये जो मौसम चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। गर्मी जो 12 बजे से 4 बजे तक का समय है, वो आपको अंदर ही रहना है घर में, या फिर अगर आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में रहिए, मतलब बाहर ना निकलें, धूप की चपेट में ना आए, धूप के संपर्क में ना आए, जिससे कि आप लू से बच सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कि मानते नहीं हैं, उन्हें आप ऐसी जगह बिजी रखना है कि वो धूप में ना निकले। इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीने की कोशिश करनी है। आपको मन नहीं है पानी पीने का, फिर भी आपको हर 20

30 मिनट्स में पानी पीना है, नींबू पानी, पानी या फिर आप ले सकते हैं छाछ, ले सकते हैं आप नारियल पानी, ले सकते हैं तली भुनी चीजों से आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ऐसी चीजें मत खाइए जो आपको थोड़ा सा हैवी लगे, या फिर बासी भोजन, इनको आपको अवॉइड करना है क्योंकि इस मौसम में बहुत जल्दी भोजन खराब हो जाता है। तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने डाइट में फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए जो कि जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, जैसे खीरा, तरबूज, खरबूजा, ऐसे फ्रूट्स लीजिए जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखे। जब भी निकलें तो ढीले ढाले कपड़े पहन के और सूती कपड़े पहन के निकलें। अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहन के निकलेंगे तो आपको मौसम अपनी चपेट में ले ही लेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है हीट के संपर्क में आने से पहले, क्योंकि ये वाला समय हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक।

साथियों, हम सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया का ये गाना सजदा। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे जो बात कर रही थी वो कर रही थी हीट स्ट्रोक के बारे में, कि किस तरीके से लू आपको अपनी चपेट में ले सकती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले सोशल मीडिया। आज का युवा, या आज का युवा ही क्यों, हम कह सकते हैं बुज़ुर्ग और यहाँ बच्चे भी, सब लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूज़ करना में दो चीज़ें हैं, एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों का सिर्फ सदुपयोग करें। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, हम उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का चलन जोरों पर है। बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सरीखे सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद जो लोग हैं, खासकर युवा, जहां एक और शिक्षा, खेल, मनोरंजन और जीवन की चुनौतियों में मुकाबले होने के मंत्र साझा करते हैं, वहीं कुछ लोग भटके नकारात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। एक वर्ग मानता है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग कम हो रहा है, इन साइट्स की चर्चा करके दुरुपयोग को लेकर प्राय होती रहती है। एक ज़माना था जब लोगों के पास अपनी बात कहने के लिए रेडियो, टीवी और समाचार पत्र ही माध्यम बनते थे। स्वाभाविक है कि हर किसी की पहुंच इन माध्यमों तक नहीं हो पाती थी, लेकिन आज अपनी बात, विचार व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया सशक्त माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया के सदुपयोग का अनूठा उदाहरण देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी हमें कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये कर दिया। लोग अगर किसी को देख रहे हैं कि उसकी हालत ख़राब है, तो उसको बचाने के बजाय उसका वीडियो बना रहे हैं। अरे, ये चीज़ें आप कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप उसे बचाइए। पर नहीं, ये चीज़ सोशल मीडिया पे पहले आ जाएगी कि हाँ, इसको इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किया। जैसे किसी को अगर कोई चार पांच बंदे मार रहे हैं, तो उसका वीडियो बना रहा है पाँच छठा बंदा खड़ा होके, तो भाई उसको बचा ही लो जब आप वीडियो बनाने के लिए आपके पास इतना टाइम है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारी पता नहीं क्या वो सोशल मीडिया पर डाल के पता नहीं क्या ही बताना चाह रहे हैं। उसको ये नहीं पता है कि वो अपनी खुद की वैल्यू को कम कर रहा है। अगर देखा जाए तो लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, ये मैं आपको सबसे पहले जैसे बता दूं कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग में सबसे खतरनाक प्रभावों में गलत सूचना और हेरफेर का प्रसार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी के तेजी से फैलने की अनुमति देने के लिए आलोचना भी की जाती है, जिससे व्यापक भ्रम, भय और यहाँ तक कि दहशत भी फैल सकती है। कोई भी एक सूचना डाल दो सोशल मीडिया पर, वो इतनी जल्दी वायरल हो जाएगी कि वो ऐसा लगेगा कि नहीं सही हो, फिर उसको वापस सही करने में लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि एक्चुअल में पता ही नहीं चलता कि सही है क्या और गलत क्या है। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, खास करके जो आने वाली युवा पीढ़ी है, वो यह मानती है कि जो कुछ भी है सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, सब जो भी जानकारी मिल जाएगी सब हमें वहीं से मिलेगी। परंतु क्या ये सही है? क्या वहाँ जितनी भी जानकारी है सब कुछ सही है और सब कुछ बच्चों के लिए यूज़ करने के लिए है? नहीं, हमें उन बच्चों को दूर रखना है इन सब चीज़ों से। गलत क्या है, सही क्या है, यह उन्हें बताना है। वह अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं कि गलत और सही का फ़र्क कर सकें। सोशल मीडिया के व्यापक प्रसार के बाद से लोगों में ऐसा हो गया है कि दोहरी तलवार हो गई है। रचनात्मकता को बढ़ावा मिला है, समुदायों को मजबूत किया गया है और बहुत सारे अवसर भी खोले हैं, परंतु नेगेटिव भी बहुत चीज़ें हैं। हमें उन नेगेटिव और पॉजिटिव को बता के आगे की ओर बढ़ना है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से देखना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी जो नुकसान है वो क्या है। सबसे पहले तो उन्हें ये चीज़ समझानी कि सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया एक इंटरनेट

आधारित तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से विचारों, सूचनाओं और सामग्री को तुरंत साझा करने में सक्षम बनाती है। यह छवियों, वीडियो, दस्तावेजों और व्यक्तिगत डाटा को तेजी से साझा करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे लोग विश्व स्तर पर जुड़ते हैं। ये वेब आधारित प्लेटफॉर्म वास्तविक समय में सहयोग, संचार और ज्ञान के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करते हैं। इन प्लेटफॉर्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने के लिए सोशल मीडिया अपना प्रभाव दिखाती है। इसमें सोशल नेटवर्किंग, सोशल बुकमार्किंग, सामाजिक समाचार, मीडिया साझाकरण, माइक्रो ब्लॉगिंग और ऑनलाइन मंच, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया ने संचार के तरीके को बदल दिया है, जिससे हम आसानी से वैश्विक स्तर पर जुड़ सकते हैं। हम लोगों को, दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से संपर्क बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जिससे भौगोलिक सीमाएं आसानी से पार हो जाती हैं। परंतु इनकी बहुत सारे दुरुपयोग भी हैं, जिसे हमें समझना होगा। इसका उपयोग हमें नेक उद्देश्यों के लिए करना होगा। अपने व्यवहारिक जीवन में सिर्फ अच्छा करें इसके लिए करना होगा, कुछ गलत सीखने के लिए नहीं। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों के साथ शेयर करनी होगी और साथ ही साथ खुद भी इससे जितना हो सके उतना दूर रहना होगा। हम बच्चों को तो बोलते हैं मोबाइल यूज़ मत करो, मोबाइल यूज़ नहीं, पर उस समय हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो हमें भी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। जो लाइफ हम पहले जी रहे थे जब मोबाइल नहीं था, उससे पहले, उस लाइफ को वापस से हमें अपनी लाइफ में लाना है। जैसे वॉकिंग करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें जब हम फ़ोन नहीं था तब करते ही थे, बट जैसे जैसे फ़ोन आए हैं हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ गई है। इन दूरियों को हमें मिटाना होगा और बच्चों को भी अच्छा ही सिखाना होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस सोशल मीडिया का उपयोग उतना ही करें जितना आपको ज़रूरत है। साथियों, अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक।

0: Spain to the rhythm.
1: Oh, yeah.
0: To the Lamar to the rhythm.
1: Check it.
0: Make your body to the rhythm. To the Lamar to the rhythm. Make your Spain to the rhythm. To the Lamar to the rhythm. Make your body to the rhythm. To the Lamar to the rhythm. Make your Spain to the rhythm. To the Lamar to the rhythm.
2: Yeah, it's all about mine.
3: साथियों आप सुन रहे थे धमाल मूवी का ये गाना अदनान सामी की आवाज में। साथियों मैं बात करना चाहूंगी आपसे आज के युवाओं की भेड़ चाल के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भेड़ चाल होता क्या है। भेड़ चाल होता है यानी कि दूसरों की देखा देखी काम करना। और आजकल के युवा यह बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या खा रहा है, वैसा मुझे करना है। क्या वो जो कर रहे हैं वो सब सही है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। हम किसी भी समाज में रह रहे हो, किसी भी कम्युनिटी में रह रहे हैं, अगर हमारे आसपास के लोग जो कर रहे हैं हम वही अगर हम अपनाते जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो कर रहा है वो सही ही हो। बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम में अगर हम किसी की चीटिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो जिसकी हम चीटिंग कर रहे हैं उसने सही लिखा हो। तो आजकल के युवाओं को ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी की भी देखा देखी ना करें, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिए। आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसके अकॉर्डिंग काम करें। हमारा फ्रेंड क्या कर रहा है, हमारा फ्रेंड कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो हमारा फ्रेंड है, सिर्फ फ्रेंड बन के रहे, उसकी लाइफस्टाइल को हमारी लाइफस्टाइल में मिक्स नहीं करना है। आज के बच्चे ये बहुत जल्दी करते हैं कि मम्मी वो भी तो ऐसे कर रहा है, उसके पास भी तो ऐसे है। नहीं, हमें ये बच्चों को सिखाना है कि उसके पास जो है वो उसके पेरेंट्स ने उसको प्रोवाइड किया है, वो उसका है। आपके लिए क्या सही है वो सिर्फ आपके पेरेंट्स तय करेंगे। आपके टीचर्स यह तय करेंगे कि एक बच्चे के लिए क्या सही है और दूसरे वाले बच्चे के लिए क्या सही है। और आपके पेरेंट्स ही तय करेंगे कि उस बच्चे को क्या मिल रहा है और आपको क्या मिलना चाहिए, वो सारी जिम्मेवारी उनकी है। तो आप उनको ये बात बार बार कह के प्रेशर ना करें कि ऐसा हो रहा है, आजकल तो मम्मी ऐसा चलता है, आजकल तो पापा ऐसा होता है कि फ़ोन का यूज़, अरे ऐसा होता ही है आजकल तो सब लोग इसको, जैसे ये इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सअप चलाना, ये तो आजकल होता है। अरे आजकल नहीं होता है, आप आजकल होता होगा बट आपको नहीं करना। आपको ये सब चीज़ें तभी करनी है जब आपके पेरेंट्स को ये सही लगेगा। तो भेड़ चाल में ना निकले कि कौन कैसे कपड़े पहन रहा है। कपड़ों में भी आजकल होता है कि वो ऐसे कपड़े पहन रहा है तो चलो मैं भी ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ। अरे भाई उसके ऊपर सूट कर रहा है, आपके सूट नहीं करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उसने जो पहना वो अच्छा ही लग रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ

नहीं लेनी है। आपको सिर्फ अपना टारगेट फिक्स रखना है, अपना लक्ष्य तय करना है कि हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। सारा फोकस आपका उसी पे होना चाहिए, ना कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे कि कौन कैसे जी रहा है। इसी को बोलते हैं भेड़ चाल। अगर हम किसी की देखा देखी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है वो हमारे आगे फ्यूचर के लिए अच्छा ना हो, हमें आगे बढ़ने से वो चीज़ें रोक सकती हैं। जैसे मोबाइल का यूज़ ही मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल का यूज़ अगर दूसरा कर रहा है, हमें वो तो कर रहा है, आप हमें क्यों नहीं करने दे रहे, तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। आप मोबाइल में हो सकता है अच्छी चीज़ें देख रहे हो, एक बार देखोगे दूसरी बार देखोगे, जब आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा ना तो आप आगे से आगे चलते हुए कहाँ पहुँच जाओगे और टाइम कहाँ कंज्यूम हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है, और सिर्फ आपका अगर कोई भला सोच सकता है तो वो है आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स। तो उनकी बात को बहुत अच्छे से समझना है। ये जो आपकी एज है यानी कि युवा पीढ़ी, ये युवा पीढ़ी सही रास्ते पे बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है और बुरे रास्ते पे भी। तो हमें वो रास्ता चुनना है जो आपके लिए सही है। हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुने, क्या सही है क्या गलत है वो आपको जब समझा देंगे और आपके लिए फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। अपने फ्रेंड्स की, अपने आसपास वालों की अनदेखी करें, वो कैसे जी रहे हैं आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहना है। अगर आप जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी फील्ड चुनने से पहले कि यार ऐसा करता हो कि वो इंजीनियर के लिए ट्राई कर रहा है तो मैं भी वहीं चला जाता, अरे भाई उसको इंजीनियर बनना है, ज़रूरी थोड़ी आपको भी इंजीनियर बनना है। अगर आपको शौक है तो आप सिविल सर्विस में चले जाओ, इंजीनियर मत बनो। अगर आपको कला का शौक है तो आप कला के क्षेत्र में जाइए। अगर आपको संगीत का शौक है तो आप संगीत के क्षेत्र में जाइए। अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो आप डांस में जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड को अगर वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आप भी वहीं जाएं, नहीं, आपको अपने शौक अपने तरीके से रखने हैं। भगवान ने सबको यहाँ अलग अलग बनाया है, सबका माइंड अलग अलग है, सबके शौक अलग अलग है। तो आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है, ना कि अपने फ्रेंड्स पे। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आप युवाओं को कि इस भेड़ चाल से बच के रहें। इस भेड़ चाल में कुछ नहीं है, आप अपना सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर स्पॉइल करेंगे। अपनी तय सीमा खुद तय करके और उस तरीके से बढ़ें जिस तरीके से आपके पेरेंट्स आपको चाहते हैं, आपको वो गाइडेंस आपको देंगे, चलना आपको है और मंजिल हासिल भी आपको ही करनी है। साथियों, अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक।

0: बठिंडा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर एनके पांडे ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय रो अतिरिक्त कार्यभार दियो गयो है। और अब है मौसम। प्रदेश रे घनकर थोड़ा माथे नौ तपारे चालता तेज गर्मी रो असर बन्योड़ो है। सगड़ा शहरा माए बदता तापमान और लू रे असर सू जनजीवन प्रभावित हुए रियो है। दिन रे वक्त सड़का माथे अघोषित कर्फ्यू जड़ा हालात बन्योड़ा है। लाड़ला 24 घंटा माए प्रदेश माए सबसू बत्ती तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर माए दर्ज करीजो। बठिने राज्य रा 25 सू 32 जिला माए लाड़ला 24 घंटा रे चालता दिन रो पारो 42 डिग्री सेल्सियस सू ऊपर दर्ज हुयो। श्रीगंगानगर और भरतपुर माए आज दोपहरा पाछे हल्की बिरखा होने सू लोगा ने गर्मी सू थोड़ी घनी राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो के प्रदेश रा पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रहने री आस है।
1: हीट वेव का ये दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 27-28 मई से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघगर्जन तेज हवाओं के साथ में हल्की बारिश की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघगर्जन तेज अंधड़ तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
0: मानसून रे आवन सू पहलिया कोटा जिला माए वन महकमो मोटे स्तर माथे पौधा रोपण री तैयारी शुरू कर दी है। जिले रा मंडाणा रेंज माए इन बार पारंपरिक तरीका रे साथे साथे आधुनिक तकनीक रो प्रयोग करर हरियाली बधाने रो लक्ष्य राख्यो गयो है। इन रे तहत दुर्गम और पहाड़ी खेतरा माए हरियाली ने बधाने खातिर 5 लाख सीड बॉल तैयार करी जा रही है। आ तैयार बीज री गेंदा ने ड्रोन और मजूरा रे मार्फत सू जिला रे वन खेतरा माए फैलायो जावेला। आ सीड बॉल्स माए अर्जुन रोंज खैर और कमुठा जड़ी स्थानीय प्रजातियां रा पौधा रा बीज भेड़ा है। ध्यान जोग है कि मिट्टी गोबर और राख रे मिश्रण सू तैयार आ बॉल्स बीजा ने धूप कीड़ा और पंछियां सू सुरक्षित रखे है। बंजर और दुर्गम इलाका खातर आ तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित वेरी है। प्रदेश माए 1 सू 30 जून ताई बाल श्रम बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी रे खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलायो जावेला। इन अभियान रो लक्ष्य बाल श्रम और बाल तस्करी जड़ी गंभीर सामाजिक बुराइयां माते प्रभावी नियंत्रण स्थापित करनो और पीड़ित टाबरा रो पुनर्वास पक्को करनो है। अभियान रे प्रभावी संचालन रे खातिर सगड़ा जिला रा पुलिस अधीक्षक ने हुकुम दिया गया है। अभियान रे तहत होटल ढाबा ईंट भट्टा फैक्ट्रियां रेलवे प्लेटफॉर्म बस स्टैंड धार्मिक स्थल और अस्थायी बस्तियां माए रह रिया टाबरारी स्क्रीनिंग करी जावेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई ने आकाशवाणी सू मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। आ इन मासिक रेडियो कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। इनरे खातिर श्रोता आपरा टोल फ्री नंबर 1800117800 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और माए GOV ओपन फोरम रे माध्यम सू भी विचार भेजा जा सके है। ए सुझाव काले ताई स्वीकार करया जावेला। अजमेर रा किशनगढ़ एयरपोर्ट सू हवाई यात्रियां रे खातिर इंडिगो जुलाई माह सू 2 नवी उड़ान सेवावां शुरू करन जारियो है। किशनगढ़ ने दिल्ली और नोएडा सू जोड़न वाली आ नवी फ्लाइट्स रे शुरू होने सू अजमेर किशनगढ़ ब्यावर और आसे पासे री बड़ी आबादी ने बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेली। एयरपोर्ट डायरेक्टर BS मीणा बतायो कि 1 जुलाई सू दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू वेली। आ उड़ान सप्ताह माए 4 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार ने संचालित करी जावेली। इनरे अलावा 2 जुलाई सू नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू करी जावेली। आ सेवा सप्ताह माए 3 दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार ने संचालित वेली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रे माए भारत केंद्र कानीसू सवाई माधोपुर माए वीर सावरकर जयंती मनाई जी। छात्रपति शिवाजी युवा मंडल री कानीसू राखी जो जयंती जलसे माए सावरकर रे राष्ट्र निर्माण माए योगदान ने याद करता हुआ संगोष्ठी और चित्रकला होड़ समेत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। होड़ माए विजेतावा ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करो गयो। जैसलमेर माए भी सावरकर जयंती माथे न्यारी न्यारी होड़ा और संगोष्ठी राखी जी। इन मौके माते घनी तादाद माए मौजूद युवावा ने पर्यावरण संरक्षण री शपथ भी दिलाई जी। और खास खास खबर आखिर माए एक कर फेरू सुनो। प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान CBSE कक्षा

0: बारारी परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियां सु संबंधित पडेसरियारी सगली शिकायतों रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है और राज्य री घनकर ठोड़ा माते तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रहवन रो पूर्वानुमान। इनरे साथ ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो वयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। साय के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी सुनने वाला सगला भाइयों, अभिनीता बहनो
6: और लाजी भैया, घना घना राम राम।
5: तो भैया देखो, हमें आप देख रहे हो कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लू इतनी पड़ रही है कि हमें अड़े में आप जो है, आप पर जो लू है, ताप होगा, जो घात है, उसको अपना आप बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन ध्यान रखना है कि जितो हो सके आप खुद ना हाइड्रेट रखना, यानी पानी पीते रहना चाहिए। और दोपहर में 12 बजे से लेकर संजय 4 बजे तक तो अगर काम बिल्कुल भी नहीं होता, अपना घर से बाहर निकलना ही को नहीं। और मेरे साथ अगर देख, अगर अपन जरूरी है बाहर जाना, तो बाहर जाते समय अपन सूती कपड़ा या जो हल्का ढीले रंग का कपड़ा है अपन वो पहनना चाहिए। और अपन मत्थो कौन इन अपन अच्छी तरह से ढक के रखना चाहिए। साथ ही साथ जो अपन पानी है, नींबू पानी है, छाछ है, ORS रो घोल है, इन नियमित सेवन अपन करना है। क्योंकि दिन भर आप जो पर्याप्त मात्रा में अगर पानी पीता रह सो या पे सादो पानी है, तो ये सबसे जो है आप शरीर जो है वो हाइड्रेट को नहीं रहे, अपन शरीर एकदम स्वस्थ रह से। और वो साथ ही अपन जो बाहर जाने से पहले ध्यान रखना है कि आप खाली पेट नहीं जाजे। आप मौसमी फल है जो तरबूज है, खरबूजो है, ककड़ी है, इो सेवन करना चाहिए। और साथ ही जो आपका सत्तू रो पानी भी आप अगर पियो तो अपन लू से बचाव में काफ़ी असरदार रहे। और साथ साथ जो है आप जो मत्थो है वो नो चेहरे नो गमछे सु टोपी सु या जो आप दुपट्टो है वो आप अच्छे तरह से ढक लीजिए। और अगर हो सके तो आप जो धूप रहा चश्मा है आप इस्तेमाल कर सको है। अगर फिर भी अगर अपन लू लग गई है तो अपन मरीज ना जो कोई ठंडी जगह में थे या छायादार जगह में थे वह लिटा देना चाहिए। अगर पूरा शरीर में जो कपड़ा एकदम काठा काठा के पैरोड़ा कसोड़ा पैरोड़ा तो उन्हें ढीला कर देना चाहिए। और ठंडे पानी की जो पट्टियाँ होगी वो मत्थे में या गर्दन मत्थे या पूरे शरीर मत्थे लगानी चाहिए। और साथ ही जो ना पीने वास्ते नींबू रो पानी, ORS रो घोल या ठंडो पानी या गन्ने रो जूस छाछ जो भी वो देवनी चाहिए। फिर भी अगर आप पर देखो कि स्थिति में सुधार नहीं है तो बिना देर की आप जो आप नजदीकी डॉक्टर है या अस्पताल है वह जाए के उनको संपर्क करके जो आप ना बताना चाहिए, जिसके सुखी है कि आप समय में आप उपचार कर सकते।

0: अरे तो बात हुई आप पर लू लगन से जो आप पर शरीर भी, लेकिन अगर साथ अगर आप बात करो कि भाई आप पर जो को कृषि की बात करो, तो मैं जो को आप पर शरीर तो ध्यान रखो, तो आप कितना कित आप पर जो को आप जो फसल बो रहे हैं वो जमीन भी आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। तो आज के समय में अगर आप देखो है तो प्रतिस्पर्धा रो समय है, तो किसान भाई भी देखे कि भाई ज्यादा से ज्यादा अच्छी जो को है वो हमारी फसल हुए, तो कहते ना कि तो जल्दबाजी में वो गलत कदम उठा ले, जो आपको कैसे कि रासायनिक खाद रो उपयोग कर ले जो को कहते ना कहते बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहे। तो आप चाहे वो आप पर शरीर वास्ते हुए चाहे आप पर वो खेती वास्ते हुए, तो आप किसान भाइयों ने जो को है ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद रो जो को उपयोग करना चाहिए, जो को सब्रे वास्ते बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई। और इससे जो को आप पर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता या जल धारण क्षमता ए भी अच्छी हुई, और जो ये कार्बनिक गुण है वो में भी सुधार करिया करी। ईर उपयोग से जो को है रासायनिक उर्वरता मतलब जो को आप पर निर्भरता है वो घट जावी, और जो को आप पर खेती की जो को लागत है वो कम हो जाया करी। और वो साथ ही साथ अगर आप बात करो तो पर्यावरण और से जो को आप पर स्वास्थ्य सुरक्षा है वो भी वीरो फर्क पड़ी, क्योंकि रासायनिक जो को जहर इस्तेमाल हो जो को किसान और स्वास्थ्य की रक्षा को नहीं हुए और पर्यावरण और भी जो को है नुकसान होया करे। तो जितो हो सके आप जैविक खाद रो उपयोग करना है, और जैविक तरीके से जो आप पर उगाई गई जो फसलों है उग्रो स्वाद या वो जो पोषण है वो बहुत ज्यादा अधिक होया करे। और साथ ही साथ जो बाजार में जैविक उत्पाद और जो को भारी मांग होने से किसानों ने आप उपज रो जो को है बेहतर और अच्छो मूल्य मिलिया करे। और जैविक खाद से जो आप भूमि रो जो पानी सूखने रही या पछा रोकने की क्षमता है वो बढ़ जावी, जिसके से आप पर फसलों में सिंचाई रो जो अंतराल है वो बढ़ जावी और पानी री भी बचत होया करे। क्योंकि आप देखो जितो हो सके आप अगर रासायनिक खाद जो आप जिसके टाइम छिड़काव कर जी तो बेटा आप अपना शरीर न पूरा ढक दीजिए ताकि आप शरीर माथे जो है वो असर नहीं हुए। तो अगर आप अपने शरीर न बचा रहे हो तो आप ध्यान रखना है कि आप और जमीन माथे अगर उजा से तो आप जमीन भी की हाल से वो कहते ना कि बना बंजर तार तक ले जावे। तो अपना ध्यान रखना जितो हो सके अपना जैविक खाद रो उपयोग करना है।
1: बिल्कुल सही बात करी कि अभी गर्मी बढ़ रही है और गर्मी में जिके मानव जो को चल रहे हैं पर चल रहे हैं नो तपो चल रहे हैं और नो तपे रे मोए जो को कृषि सू इरो जुड़ा हुआ है वो बहुत भी गहरा है। अगर नो तपे रे मोए अगर आप खेतों में अगर आप गहरी जुताई करो तो गहरी जुताई से अपने फायदे मिल जाए कि आप जमीन रे मोए जितना भी कीट पतंगा है वो बाहर आ जाए और गर्मी से कर मर जाए, और जो को भी आप जमीन रे मोए खरपतवार है वो भी अगर जमीन से बाहर आ जाए वो भी आप मर जाए। तो देखो कि सबसे पहले खेती रे मोए जो को अनो समय चल रहे तो वो मोए अपन घरेलू जुताई बहुत जरूरी है, और वो साथ साथ अपना जो को भी यंत्र है कृषि यंत्र है, क्योंकि हमें आने वाले जो को समय है जो को वर्षा आलू खेती करे या जो को हण जो को जायद की फसल बाहर आ रहा है कौन बाहर आया तो जो को हमें अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं तो वास्तव में कृषि यंत्र और भी पूरी पूरी देखभाल करनी जरूरी है। और वो साथ साथ अब जो गर्मी की बात करी तो गर्मी रहा है अपन जरूरी है कि भाई जो कोई भी किसान भाई है जो को आप कौम है तो जल्द जल्दी निपटा देवे सुबह सुबह निपटा देवे और कोशिश ये करे कि भाई 12 बजे से लगाए 4-5 बजे तक अगर कोई काम खेती बाड़ी नहीं करे, अगर आवश्यक हो तो ही करे। और कोई आवश्यक काम से अगर मान लो कोई गाँव से शहरी तरफ अगर कोई खाद बीज या कोई ज्यादा सामान लेने जाओ करे तो उस समय भी एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि जब भी घर से निकले तो कुछ खाली पेट नहीं निकले, कुछ खाए पी निकले और वो साथ साथ पानी की बोतल भेड़ी ली निकले, क्योंकि गर्मी में पानी की कानों की आवश्यकता पड़ सके। और उसके साथ साथ सिर मथे टोपी या फेटो जो को भी गाँव आड़े परंपरा जी है जो को पैर निकले और ढीला ढाला कपड़ा पैर निकले जिसके चुकी ऐसे गर्मी से बचाव हो जा से। और कोशिश यह करें कि भी घर जब भी निकले तो छाछ है या आम पानी है या नींबू पानी है ए पी निकले, खाली पेट नहीं निकले उस से गर्मी से थोड़ा बचाव हो जाए। और उसके बाद भी अगर गर्मी से कोई घात लग जाए कर जाए तो खुद डॉक्टर खुद नहीं बने और कोशिश यह करें कि भाई जो को भी आसपास प्राथमिक चिकित्सालय हुए या अस्पताल हुए तो वो जाए आप चेकअप करावे, क्योंकि अस्पताल में हर चीज़ अपने फ्री भी मिले। तो कोशिश यह करें कि और दूसरों एक विशेषज्ञ भी बैठे और कोई भी समस्या हुए तो डॉक्टरों ने बताए के और वो जो को भी अपन इलाज टिकड़ी लिख दे कर दे तो 3-4 दिन की जो को भी लिख दे तो अपन सेवन करके और जब जब जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाऊँ तब तक अपन टिकड़ी लेनी चाहिए और उसके बाद ही अपन दूसरों को करना चाहिए। और खेती बाड़ी में बता दियो कि भी अपन घरी जुताई करनी चाहिए, साधनों की देखभाल भी करनी चाहिए, और हमें जो वक्त है जो हमें आगे बरसात का मौसम भी आ से तो अपन खाद बीज खरीदना है और बीज

खरीदना है और भी कोई भी साधन खरीदना करना हो तो भी अपना आना लेवन समय है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी और मुद्दे की बात है कि भाई आप देख रहे हो कि भी हनो किसान भाई जो रासायनिक बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो रासायनिक शू बचण वास्ते और सबसे बड़ो अल्टरनेट है कि अपन जैविक प्रयोग करना चाहिए। जैविक का देखो फायदा है वो तो किसान भाई से छिना को नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता दो कि देखो जैविक में एक फायदा है कि भाई थोड़ी खेतरी खाद खेत में तैयार थोनो गोबर मिल जाओ थोनो गौमूत्र मिल जाओ और ऊँच उठे थोड़ी खाद जो थोड़ा खेत में तैयार कर सको। दूसरो में थोड़ी की लागत भी को नहीं आवे, मेहनत तो किसान भाई करीजिए तो सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी लागत कम हो जाओ। और पूरा तो बीजा फायदा यह हो कि थोड़ी जो खेत है खेत री जो उत्पादकता है वो हमेशा बढ़ोड़ी रही हुई। तो दूसरो अगर आप और जगह आप रासायनिक और प्रयोग कराएं तो देखो रासायनिक प्रयोग वास्ते सबसे पहले तो अपन रुपया खर्च करके जहर लेना पड़े और पच्चे उर्वाद जहर अपन जब खेतों में छिड़कना करना है तो पूरा जो भी नियम कायदा हुए कि भाई कपड़ा पूरा पैर के रखो जिसके साइड हवा चल रही है वो साइड थोड़ा छिड़काव करना है ओके में चश्मा लगाए रखना है और जब डबला खाली हुए तो उन डबला नो ऐसी जगह फेंकना है जो थोड़े बच्चों से दूर हुए थोड़े पशुओं से दूर हुए या उन थोड़ा जमीन में गाड़ना है। लेकिन मतलब है कि भाई जहर छिड़कने के बाद भी अपन और जो लाल अवशेष है वो भी अपन विशेष तौर से पूरा पूरा ध्यान देना पड़े। और उसके साथ जब आप छिड़काव करो तो आप जो जमीन में एक बार थोड़ा फसल बढ़िया दे देते लेकिन धीरे धीरे वो जो जमीन है उन्हें बंजर बना देते और जो पूरी उत्पादन क्षमता है जमीन की वो धीरे धीरे कम कर देते। तो आप किसान भाई ऐसे कैसे कहते कोशिश करो कि जैविक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो। रासायनिक प्रयोग करना एक बार तो बढ़िया है लेकिन आने वाले समय वास्ते थोड़ी जमीन की जो भी उत्पादन क्षमता है वो थोड़ा कम कर देते। और आप एक और बात बोलो कि अगर मान लो कोई किसान भाई जैविक शू कोई अनाज पैदा करी हुए और ये किसान भाई रासायनिक से कोई अनाज पैदा करी हुए अगर आप बाजार में मार्केट में अगर बेचना चाहते हो अगर आप कह दे सके भी ये जैविक से उत्पादित अनाज है और रासायनिक से उत्पादित अनाज है तो निश्चित रूप से अपन जो को जैविक से अनाज आप उत्पादित करी हो और अपन मूल्य ज़्यादा मिल से। तो देखो कि भाई अपन लागत भी कम आई और अपन मूल्य भी ज़्यादा मिल रहे हुए तो मतलब यह हो गया कि अपन वो मूल्य ज़्यादा मिल रहे हुए। तो किसान भाई ने यही कहो कि भाई थे उसके जो ज़्यादा जैविक प्रयोग करो और खेती में मोए बढ़िया उत्पादन करो। आप आगे भी बातचीत जारी रख सो और हमें सुन जाओ राजस्थानी लोग भी।

0: आपा सुनियो राजस्थानी लोकगीत।
1: अब बातचीत धारण कर रहा था कि भाई जैविक रूप प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ लो और ताप का अपन बचाव भी चाहिए। और एक चीज़ और है कि भाई अपर जो एक क्षेत्र है इरमो अपर है खेजड़ी वृक्ष कह सकें कि भाई अपर ये थ्रो एक संजीवनी या कल्पवृक्ष भी होने कह सकें,
0: बिल्कुल
1: बहुत ही एक महत्वपूर्ण पौधो है खेजड़ी। और ये सो अपन सांगरी भी उपलब्ध हुई, और दूसरा जो कि जो सांगरी है जो कि मैं फुल प्रोटीन और फाइबर रही जैसे सो अपन एक अपर है आयुर्वेद भी एक मुख्य स्रोत भी है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात के भी अपन जो को खेजड़ी है उस अपन जो को हरी पत्तियों या जो को लौंग या गूंद भी मिली जो को भी मवेशी वास्ते और जो गूंद है जो अपने वास्ते भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
0: बिल्कुल
1: और औषधि गुण में बात करें अपन तो देखो ये छाल और पत्तियों और जो को है उनमें आयुर्वेद रो बहुत बड़ा महत्व है। छाल और काढ़े से आप मधुमेह खांसी अस्थमा जैसी बीमारियों से वास्ते भी है बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और ये खेजड़ी री जो को सबसे बड़ी विशेषता है कि जो अपने जैसलमेर में यहाँ पर ये साइड रहे हैं 45 से 50 डिग्री जो को गर्मी पड़े वे गर्मी में भी है जो अपर खिजड़ी है यहाँ पर हरी भरी रह से। और इस वास्ते आप कह सको कि भी विष्णु समाज है कि वास्ते इन जो जो इन काट रहा था वो वास्ते विष्णु समाज रहा 363 लोगों आप बलिदान भी दिए। तो ये एक खेजड़ी है जो विष्णु समाज वास्ते भी एक बहुत बड़ी बढ़िया वृक्ष है वास्ते पूजनीय वृक्ष है। और इस वास्ते अपन कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई जो कोई वृक्ष है अपन इन्हें बचाना चाहिए, इस वास्ते अपना प्रयास भी करना चाहिए। और किसानों ने भी यही कह सो कि भाई जो भी थोड़े खेतों में या खेत भी अगर खेजड़ी वृक्ष उपलब्ध है तो ये पूरी पूरी सुरक्षा करो क्योंकि जो कोई जो अपन ये सो फल मिले जो जितन कोई सांगरी तो ये सांगरी रा जो बाजार में ये जो को मूल्य है वो भी बहुत अपन बढ़िया मिल जाओ। तो आप कोशिश यह करो कि भाई सांगरी ना बचाऊँ। और उसके साथ साथ आप एक और बात कहो कि भाई जो को सांगरी रो वृक्ष बहुत बड़ो लंबो चौड़ो होता तो हमें काजरी द्वारा एक ऐसा अनुसंधान भी किया गया है कि जो को काजरी रो जो को ये सांगरी रो वृक्ष है वो करीब 5 फीट के आसपास भी उपलब्ध हो रही है और उरमोए कोई भी कोटा भी को नहीं। और जो को हनो जो को मूल वृक्ष है उरमोए कोटा भी है और उन्हें अपन सांगरी भी मिले लेकिन हमें जो कोई काजरी द्वारा जो कोई अनुसंधान किया गया है उरमोए अपन 5 फीट तक रहा अपनो इरा वृक्ष मिल जा से। तो किसान भावना पाई कह सो कि भाई कोशिश है करें कि भी काजरी से जुड़ा रहे

0: और उस वो ना जो को भी है खेजड़ी वृक्ष है वो भी उन्होंने उपलब्ध करा रही है। और ये खेजड़ी की सुरक्षा करना इन्हें महत्व देना अपर पूरा पूरा दायित्व है और अपनो हीरो पूरा पूरा उपयोग में लेना चाहिए। तो जरूरी है कि भाई खेजड़ी पूरी पूरी अपनों रक्षा भी करनी चाहिए।
1: आप चर्चा तो और भी कर सो लेकिन पहले समझे एक और राजस्थानी लोकगीत आप चर्चा न रख सो जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
3: किसान भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। साय 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम रेडियो 890।
4: वाणी @ 90।

0: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी ने अपने 90 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे किए हैं और इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने जन जन तक सूचनाएं पहुंचाई हैं, मनोरंजन पहुंचाया है और आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए कार्य किया है। और इन 90 वर्षों में जो रेडियो से जुड़े रहे हैं, आकाशवाणी से जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत से लोग हमें जैसलमेर में मिले। उन लोगों से आपसे मुलाकात करवाई, उनसे बातचीत की और उनके अनुभव हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हमारे एक जैसलमेर के व्यक्तित्व गिरिराज व्यास। गिरिराज जी, हम आपका स्वागत करते हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।
0: गिरिराज जी, शुरुआत करें, आपका बचपन जो जैसलमेर में बीता, वो जैसलमेर के हालात कैसे थे? सूचना के लिए मुझे लगता है उस समय रेडियो के अलावा कोई साधन नहीं था, और जैसलमेर में जब रेडियो आप सुनते थे बचपन में, क्या यादें, कितनी पुरानी यादें जुड़ी हैं रेडियो से?
1: जी, रेडियो हमारे घर में दादाजी के पास था और हमारे जो दादाजी थे वो कहते थे कि विश्व में जितने भी आविष्कार हुए हैं उन आविष्कारों में जो महानतम आविष्कार वो रेडियो का आविष्कार है।
0: बिल्कुल।
1: तो वो जब रेडियो हमारे घर में था तो हम दादाजी उनको बताते थे कि भाई ऐसे छोटा मोटा दो तीन अलग अलग प्रकार के रेडियो का कलेक्शन उनके पास था। तो उस महान आविष्कार का हमने भी बचपन में बहुत सुना है, क्योंकि वही साधन था हमारे पास। क्रिकेट की कमेंट्री से लेके होली दिवाली हर पर्व के गीत जो उसमें बजाए जाते थे तो उसका ही साधन था और हम उसी भी ऊपर सुनते थे। और हमारे दादाजी अब जो घर में परिवार सदस्य थे विशेष दिवस के ऊपर आविष्कार रेडियो को बजाया करते थे।
0: क्या बात कही आपने, जो विशेष अवसर आते हैं उनमें रेडियो अपने उसी अवसर के गीत सुनाता है, उसके संबंधित वार्ता हैं और उन पर्वों की जानकारी, जैसे हमारे हम यूँ कहें कि राष्ट्रीय पर्व हों चाहे हमारे सांस्कृतिक पर्व हों, सभी पर्वों की जानकारी रेडियो के माध्यम से दी जाती रही है। और मुझे लग रहा है कि जो पर्व के समय रेडियो का महत्व

0: और ज़्यादा बढ़ जाता है। गिरिराज जी, आप देखिए, एक व्यवसाय है आपका और पर्यटन व्यवसाय, वो भी ऐसा है कि हमारे जैसलमेर की जो सांस्कृतिक धरोहर है पुरानी, उसका संरक्षण आपने बड़ी खूबसूरती से किया है और उन चीज़ों को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आपकी हवेली के अंदर आते हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपके जो घर के अंदर इतना जो कलेक्शन था, आप चाहते थे इसको दुनिया देखे, वो कितना महत्वपूर्ण था। आप शुरुआत कैसे किया आपने?
1: ये जो क्या है, जब हमने देखा कि संरक्षण का क्षय हो रहा है, चीज़ें टूट रही है, बिखर रही है, तो हमने तय किया कि हम जो भी हमारा पुश्तैनी सामान था और अड़ोस पड़ोस जो भी लोग चीज़ फेंक देते थे, हम उनसे मांग के उसका संरक्षण करते थे ताकि वह चीज़ स्थायी रूप से सुरक्षित हो जाए। इसमें हमें मैं कुछ पुराने रेडियो भी उसमें हमने संरक्षित करके रखे। तो ये प्रेरणा हमको इसलिए, क्योंकि हम देखते थे कि चीज़ें टूट रही है, ख़त्म हो रही है, आने वाली पीढ़ी इसको क्या देखेगी, कैसे उसको पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कितने समर्थ थे, उनके पास क्या क्या संसाधन थे। तो बस ये एक कल्पना आई और ईश्वर कृपा से हमने ये संरक्षण का काम किया। और जिन लोग आज, अब स्थिति एक जिनके लोगों को कोई वस्तु होती है जो फेंक रहे होते हैं, वो पुराने जातु बोलते हैं कि भाई आप ले जाओ, इसका संरक्षण करो।
0: हाँ बिल्कुल। और हम बात करें जो चीज़ें हैं आपके पास में, उनमें से बहुत सारे रेडियो भी हैं, और वो कितने पुराने रहे होंगे रेडियो, आपको कुछ याद है?
1: वो रेडियो काफ़ी पुराने हैं, जब से हमने देखा परिवार के उस सदस्य के रेडियो थे, कुछ बहुत लंबे रेडियो थे, कुछ छोटे थे, कोई गोल थे। तो देखिए उनके आज से पहले लोगों के पास रेडियो के लिए भी कितने सुंदर सुंदर उनके पास साइजें थी, और उनके पास कलाकृति के रूप रेडियो को लकड़ी के अंदर बना देते थे। पहले प्लास्टिक नहीं होता, तो वो रेडियो लकड़ी के अंदर, उसके जो बटन भी होते थे वो लकड़ी के होते थे, तो वो पूरा सेटिंग उनका पुराना लकड़ी का ही रेडियो होता करता था।
0: बिल्कुल। जो बाहर का जो सुंदरता रेडियो की, वो बड़े साइज में और ज्यादातर लकड़ी की बॉडी होती थी उनके, वो आज आपके पास भी संरक्षित हैं। और अंदर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजी थी पुरानी, बाल बाली थी, तो उसमें बड़ा साइज इसलिए हो जाता था। बाद में जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो छोटे हो गए रेडियो, तो वो छोटे छोटे रेडियो भी मैंने आपके पास देखे, टेप रिकॉर्डर जो गाने जिसमें बजते थे। और उसके अलावा जो हम कहें कि आपके पास में जो पुराने सिक्के हैं, पुराने बर्तन हैं, और हम खास बात करें जो पुरानी पेंटिंग हैं, जो जो बर्तन हैं, जो पुराने बर्तन थे उनको देखकर आज के बर्तन हम देखते हैं अपने किचन में, बहुत परिवर्तन आया। पहले टेक्नोलॉजी अलग थी, यूँ कहें कि देशी चूल्हे पर खाना बनता, अंगीठी पर बनता था, और आज जब गैस आ गई तो वो बदला है। तो आपके यहाँ जाकर के उन चीज़ों में फ़र्क हम महसूस करते हैं, वो बहुत सारे पर्यटक आते हैं, वो देखते हैं कि पहले हमारे कैसे सामान हम कैसा यूज करते हैं। तो बताइए क्या क्या कलेक्शन है और उसका क्या महत्व है?
1: जैसे पुराना बर्तन सब पीतल का होता था, पीतल, कांसा, तांबा, ये सब यूज करते थे, स्टील उसके बाद में आया। और जो पेंटिंग्स है, तो ये पेंटिंग्स पहले भित्ति चित्र के रूप में थी, हाथ के रूप में थी, कांच के ऊपर भी पेंटिंग हुआ करती थी, कुछ कांच का सामान भी है, लकड़ी का सामान भी है। तो यह संरक्षण, ये अलग अलग, कुछ तो पुश्तैनी हमारा है, कुछ हमने यहाँ वहाँ से करके इसको संरक्षित किया ताकि ये खत्म नहीं हो जाए और संरक्षित होता रहे। तो कांच के जो बर्तन है, पहले कांच के बर्तन भी खाना खाए रहे थे, मिट्टी के बर्तन भी है, सोने चांदी, अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग होता था।
0: बिल्कुल। और मिट्टी के बर्तन भी यूज होते थे, और खासकर आपने जैसे बात की कि जो पुराने समय में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग जैसे कि दूध गर्म करने के लिए, दही जमाने के लिए होता था, और चाय के कुल्हड़ मिट्टी के होते थे, और बाकी ज़्यादातर बर्तन कांसा पीतल ये ज़्यादा उपयोग होते थे। तो भारत एक बहुत ही पुराने समय में समृद्धशाली राष्ट्र रहा है, और हमारे घरों में जो पीतल एक आज बहुत कीमती धातु है, उसके बर्तन ज़्यादातर मिलते हैं, और मिश्र धातु जैसे कि कांसा है उसके बर्तन भी पाए जाते हैं। हम बात करें, हमने आपके यहाँ पर बहुत सारे तरह के जो टिफ़िन देखे हैं, और आज भी उतने खूबसूरत टिफ़िन नहीं है जो आपके पास मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और कई तो मैंने आज जो आधुनिक युग में जो प्लास्टिक के जो टिफ़िन आते हैं रोटी रखने के, जिसको हम कैसरोल बोलते हैं, वो शायद वहीं से कॉपी किए गए हैं, कुछ उनके बारे में बताइए।
1: जैसे कुछ टिफिन है जो पीतल के हैं, एक टिफिन हमारे पास है जिसमें पूरा पूरा क्रॉकरी सेट है, उसमें ऊपर एक लोटा है पानी का, साइड में दो बड़े चम्मच लगे हैं, और उसके जो टिफिन के जो ढक्कन है वो प्लेटें हैं, और नीचे जो बड़ा है वो उसका, उसमें पूरा सामान, जो भोजन सामग्री उसमें रखा करते थे। मतलब अगर उसको पूरा खोल दे तो पूरा उसको डाइनिंग सेट उसमें अंदर बन जाता है। तो पानी का लोटा से लेकर नमक रखने तक की व्यवस्था वो साथ में दिया करते थे। कुछ डब पीतल के डे जो बड़े बड़े टिफिन, उसमें हर पुराने टिफिन में आपको चम्मच साथ में मिलता था, नमकदानी साथ में मिलती थी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये अलग अलग टाइप के

0: यात्रा के लिए अलग होते थे, कुछ घर खाने के लिए अलग होते थे, कहीं आप लंबी दूरी पर जा रहे हो तो पानी का लोटा भी साथ भर, ऐसा टिफिन एक हुआ करते थे।
1: अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि चावल पकाने में काम आती हैं। जैसलमेर एक यूँ कहें कि रेगिस्तानी इलाका है, तो चावल यहाँ बहुत खाए जाते हैं, उससे संबंधित बर्तन यहाँ बहुत पाए जाते हैं, आपका कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो चावलों का जो यूँ कहें कि चावल कहाँ से यहाँ पर आते थे वो पुराने समय में, थोड़ा सा बता सकें आप?
0: देखिए, चावल यहाँ का मूल खाद्य तो है नहीं, तो चावल जब बाहर से आते थे ये ट्रेड रूट था, तो लोग यहाँ के व्यापारी बाहर जाते थे, बाहर के व्यापारी आते थे, तो आदान प्रदान वस्तु में बाजरा दिया, चावल लिया, फिर चावल को उन्होंने जब बनाने की विधि शुरू करी, तो फिर चावल के जो बर्तन कैसे स्पेशल पीतल के बर्तन में उडा बोलते थे, उसमें चावल को बना के फिर उसमें डाल देते थे, तो उसका पूरा पित बाहर निकल जाता था, एक चरू बोलते थे, उसमें दाल बनती थी। तो पुराने लोगों हमसे ज़्यादा प्रगतिशील और ज़्यादा शौकीन लोग थे वो।
1: हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम पुरानी अपनी सांस्कृतिक विरासत जो आपके यहाँ संरक्षित है, उसमें खाने पीने की चीजों को कैसे बनाया जाता था, और क्या चीजें हमारे जैसे चावल के अलावा क्या यहाँ पर खासकर बात करें पुराने समय में क्या मतलब खाने में इस्तेमाल करते थे?
0: देखिए, यहाँ का मुख्य भोजन तो है बाजरा, बाजरा तो बाजरे का खीच, बाजरे की राब, ये सब बाजरे का बनता था, बाजरे की रोटी, तो बाजरे के साथ दो देसी सब्जियाँ होती थी, चिपड़ी की सब्जी होती थी, और ये सब लोग जो स्थानीय भोजन बाजरा ही होता था, गर्म क्षेत्र था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बाजरा खा के उसको पचा लेते थे।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद गेहूँ काफ़ी बाद में आया, लेकिन फिर गेहूँ यहाँ पे खड़ी में उगने लगा, तो गेहूँ भी यहाँ का हो गया, बाजरा था, जार था, लेकिन मूल स्थायी रूप से यहाँ का भोजन बाजरा ही था।
1: बिल्कुल, बाजरा आज भी खाया जाता है, गांव के लोग बड़े शौक से खाते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट का बहुत प्रचार प्रसार किया है, क्योंकि जो गेहूं है और बाजरे में जो मोटा अनाज है उसमें ताकत ज़्यादा होती है, और खासकर बात करें जो बारानी खेती है जो बरसात से होती है, तो बाजरा इसलिए भी पौष्टिक होता है कि बिना खाद के या बिना किसी बाहरी पानी के वो पैदा होता है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है बाजरा, और आज भी बना हुआ है। हम बात करें पुराने जो कलेक्शन में है, आपके यहाँ बहुत सारे सिक्के हैं, कितने पुराने सिक्के आपके यहाँ पर मौजूद हैं?
0: सिक्के तो देखिए, ये ब्रिटिश टाइम के जो सिक्के हैं, कुछ जो राजाओं के समय चलते थे, बाकी आज़ाद भारत के जो सिक्के अपने पास, जो 10 के, 5 के जो सिक्के पुराने थे वो सिक्के थे, कुछ आज़ाद भारत के जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो कुछ नोट उसका संग्रह भी है, तो अधिक पुराने सिक्के तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो जो सिक्के उपलब्ध है वो आज़ादी के बाद के और राजाओं के समय के हैं सिक्के।
1: और हम देखा है मैंने आपके पास जो कपड़ों का कलेक्शन है, पुराने कपड़े कैसे होते थे, तो वो कितने पुराने हैं, और वो मतलब कहाँ अलग अलग लोगों के किस प्रकार के कपड़े हुआ करते थे?
0: इसमें अधिकांश कपड़े तो हमारे पुश्तैनी परिवार के ही हैं, संभाल के रखे हुए हैं। कुछ कपड़े हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे परिवार के लोगों के जो जो इनको खराब कर रहे थे या फेंक रहे थे, उन्होंने बोला भाई आप इसको संग्रहालय में सुरक्षित करके रखिए, तो ये सब कपड़े वगैरह पुश्तैनी हमारे पारिवारिक
1: कितने
0: हैं।
1: पुराने रहे होंगे,
0: ये आप देख लीजिए 70-100 साल के अंदर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है।
1: मतलब 100 साल के आसपास
0: हाँ
1: के जो हैं।
0: हाँ
1: कुछ फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, हमने एक पाठशाला जो उसका फोटो देखा है कि जिसमें सारे बच्चे या तो पगड़ी बांधे हैं या हैट लगाए हैं, मतलब नंगे सर कोई नहीं है। तो क्या ऐसी परंपराएं थी हमारे कि स्कूल में बच्चे पगड़ी पहन के जाते थे या छोटे बच्चे टोपी या कैप लगाते थे?
0: हाँ ऐसी परंपरा थी यहाँ पे कि जो भी जैसलमेर में ये था कि भाई आप नंगे सर के नहीं घूम सकते हो, तो जो भी विद्यालय भी जाता था बच्चे, तो वो अपनी टोपी पगड़ी, बच्चों की टोपी अलग आती थी, वो सीपियों से बन के उसको बनाते थे, कपड़े की भी आती थी, छोटे बच्चों के लिए छोटा साफा आता था।

0: चीजें, कैसे सवाल पूछते हैं, क्या पूछते हैं बताइए।
1: फिर उनको बोलते हैं कि सबसे पहले तो बोलते हैं बच्चा अच्छा इसका संरक्षण कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और चूंकि संरक्षण करना ही इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, तो जहाँ कभी मिलता है तो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपने ये अच्छा संरक्षण किया है और आप इसको कंटिन्यू रखिए।
0: अच्छा, जो अगली पीढ़ी है हमारी, जो पुरानी चीज़ें म्यूजियम के अंदर ही देखने को मिलेंगी, जो आधुनिक पीढ़ी है उन्होंने वो सामान नहीं देखा, उनके लिए हमारी पुरानी संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे पूर्वज कैसे जीवन जीते थे।
1: देखिए, उनको ये सोचना चाहिए कि जब दुनिया में लोग समझते नहीं थे तब हमारे देश में ये पता था कि चांदी के बर्तन में खाने से क्या फ़ायदा होगा, पीतल में खाने से क्या फ़ायदा होगा, सोने में खाने से क्या फ़ायदा होगा, मिट्टी में खाने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये उन लोगों की रिसर्च थी। तो इस रिसर्च को उन्होंने कितने साल पहले सिद्ध कर दिया था। दूसरी बात, उनके पास जो जरी का काम होता था वो आज भी, आज के समय मशीनों से भी नहीं हो पा रहा है, वो हाथ से इतना प्यारा काम।

0: करते थे, पत्थर पे जो आप एक निकासी आप जो देख रहे हो आज से 100 साल पहले 200 साल, तो वो लोग कितने धैर्यवान होके कितना तरीके से इतना अच्छा काम करते थे। ये लोग अब आज की नई पीढ़ी को हमको ये सीखना जरूरी है कि देखो कितना उन्होंने उस विकट परिस्थितियों में जब मशीनें नहीं थी, मौसम खराब था, पानी था, फिर भी उन्होंने इतनी चीजों को संजो के रखा और कितना अच्छा बना के रखा।
1: बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आकाशवाणी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। पूरे देश के जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनके बारे में लोगों को बताया है, उनके संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। जैसलमेर के भी हवेलियों पर, किले के ऊपर और डेजर्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर बनाए गए, फीचर्स बनाए गए। तो आकाशवाणी का पर्यटन को बढ़ाने में आप कितना योगदान मानते हैं?
0: देखिए, जहाँ जहाँ जहाँ वहाँ आकाशवाणी पहुँचती है दुर्गम क्षेत्रों में, वहाँ जब इसके बारे में लोग सुनते हैं, आज तो इंटरनेट का युग आ गया, लेकिन फिर भी जब ये आकाशवाणी के माध्यम से ही लोगों तक ये सूचना पहुँचती दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र पे, क्योंकि ये जो रेडियो का जो आविष्कार, मैंने जैसे पूर्व बताया कि ये प्रकार का विश्व का सबसे महानतम आविष्कार है, तो जहाँ मान लो आज की डेट में रेडियो नहीं चल रहा होगा वो, लेकिन वो आकाशवाणी तो चल ही रही होगी, रेडियो तो चल ही रहा होगा, तो ये एक संभव है कि वहाँ तक ये सूचना जाएगी तो धीरे धीरे उनको भी ये जानकारी प्राप्त होगी।
1: बिल्कुल, तो जो हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं इनके बारे में वो लोग जो यहाँ मतलब दूर दराज के इलाके हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ बैठकर भी अगर रेडियो सुनते हैं तो उनको जैसलमेर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अब बात करें कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, भारी संख्या में आते हैं, तो और भी कई क्षेत्र क्या जैसलमेर के आसपास के एरिया में वो कौन से स्थल हैं जहाँ पर पर्यटकों को जाना चाहिए?
0: एक तो देखिए, जैसे ये पहले क्रम में जो देव स्थान है हमारे जैसलमेर, पूरा चारों तरफ देखिए हमारे देवियों का स्थान है, अगर सरकार अगर नया उसको अनुमति देगी तो लोग पर्यटक वहाँ जा सकते हैं। एक शहर के अंदर जो पुराना शहर है उसको भी घूमे, क्योंकि पुराना शहर जैसलमेर का बहुत सुंदर है और वो इतना सुंदर शहर भारत में कहीं नहीं है। दूसरा, या कल्चरल जब भी कोई त्यौहार हो, त्यौहार पे पर्यटक आए, होली, जैसलमेर की होली, जैसलमेर का दशहरा, जैसलमेर की दीपावली, जैसलमेर आखा तीज, तो ये सब लोग जब इस त्यौहार टूरिज्म के अलावा भी आएंगे ना, तो लोगों को ये उसको धार्मिक टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म ये सब साथ में होगा तो और अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि जो शहर के अंदर गलियां हैं पतली पतली, बड़ी खूबसूरत गलियां हैं, और उनमें जो घर हैं पुराने, सारे घर ऐसे हवेली नुमा बने हुए, बड़े ही सुंदर, तो सच में वो घूमने योग्य हैं। और हम बात करें जो जैसे कि तन्नोट का जो आज बहुत प्रचार प्रसार हुआ, इस चीज़ के कारण आज पर्यटक वहाँ पहुँच पा रहे हैं, और भी जो मंदिर हैं जैसे भादरिया जी हैं, जो तैमड़े राय हैं, काले डूंगर हैं, ऐसे इन मंदिरों का भी विकास करके यहाँ भी पर्यटक पहुँचेंगे तो ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है। और मुझे लग रहा है गिरिराज जी के जैसलमेर का जो खूबसूरत डेजर्ट है वो बॉर्डर के बहुत करीब है, तो अगर पर्यटकों को इन इलाकों में जहाँ डेजर्ट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है वहाँ पहुँच सकें तो मुझे लगता है इससे अच्छा पर्यटन के लिए कुछ भी नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है?
0: जी, ऐसा जैसे वाघा बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर टूरिज्म है, वैसे सरकार प्रयत्न भी कर रही है और आगे करेगी भी, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा रेलवे स्टेशन बना है, टूरिज्म को देखते हुए यहाँ पे इतने शहर में भी अच्छा विकास हुआ है, तो हो सकता है ये बॉर्डर टूरिज्म के लिए भी, टूरिज्म के लिए सरकार कुछ प्रयत्न करे तो उसे और, क्योंकि मंदिर भी पास में है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए जो बॉर्डर देखने की लालसा सारे पर्यटकों में होती है, और जब उनको पता होता है कि हम बॉर्डर तक जा सकते हैं तो बड़ी खुशी से वहाँ जा भी रहे हैं और भारी संख्या में जा रहे हैं। और रास्ते में तन्नोट मंदिर जो पड़ता है, एक समय ऐसा था कि कुछ ही पर्यटक वहाँ पहुँचते थे, आज वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, क्योंकि जैसलमेर एक बहुत छोटा शहर है और जितने पर्यटन स्थल हैं शहर के अंदर वो सारे नज़दीक हैं, तो जब एक साथ में बहुत सारे पर्यटक आ जाते हैं ना तब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो पर्यटक जो अन्य क्षेत्रों में भी घूमेंगे तो जैसलमेर के शहर के ऊपर जो भार पड़ता है कहीं ना कहीं वो कम
0: कम हो
1: होगा,
0: जाएगा।
1: और किले के अंदर एकदम से जो भीड़ उमड़ती है तो जो पर्यटक आते हैं उनसे तो यही अनुरोध है कि जो त्यौहार होते हैं और मतलब एकदम से एक ही दिन सारे लोग जैसलमेर आ जाते हैं तो उनको भी असुविधा होती है, तो थोड़ा सा अपना प्रोग्राम है एक लंबा समय के लिए बनाए, 10-15 दिन के आगे पीछे कर सकते हैं। और मुझे लगता है दशहरे से मौसम अच्छा हो जाता है,
0: हाँ, जैसे अच्छा
1: तो
0: होता है।
1: दशहरे से शुरुआत करें तो दिवाली पे जो भीड़ एकदम ज़्यादा परेशानी होती उतनी नहीं होगी।
0: देखिए, दीपावली के बाद दशहरे पे आ जाए, दीपावली है, होली के बाद जो गणगौर का फेस्टिवल था उस पर आ जाए, जैसे आखा तीज का पर्व होता है उस पर आ जाए, मरु महोत्सव होता है उसमें आ जाए, तो मंदिर तो बारह मास खुले रहते हैं तो वहां पे भी जा सकते हैं।

0: तो पूरे, तो इससे पूरे साल का टूरिज्म अपने को मिलेगा, नहीं तो अभी क्या है नवंबर से लेके 5 तक जो टूरिज्म मिलता है, तो खैर वो अपनी सुविधा के हिसाब से आते हैं, लेकिन टूरिस्ट तो आग्रह रहेगा कि इन समय पे भी आए तो जैसलमेर का अच्छा विकास भी हो जाएगा, तो 12 मास टूरिज्म चलता रहेगा 12 मंथ।
1: अच्छा, जैसलमेर एक अच्छी शादियों का पर्यटन के रूप में, जैसे कि यहाँ कई लोग आके शादियाँ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जिसके कारण जैसलमेर का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है, तो शादियों का जो यहाँ पर माहौल है, यहाँ के तरीके से जो शादी करते हैं, क्योंकि जैसलमेर का कल्चर है जो यहाँ की शादियाँ कुछ अलग विभिन्न तरीके से होती हैं, तो उससे पर्यटन को कितना और फायदा होगा?
0: ऐसे दो फायदे होंगे, एक तो पर्यटन को तो फायदा होगा ही होगा, दूसरा जो अपने सांस्कृतिक रूप से शादियाँ होगी वो बची रहेगी, और जो पर्यटक आते हैं यहाँ शादियाँ करने, तो वो यहाँ के स्थानीय लोगों का जो सामान यूज करते हैं, यहाँ के पंडित को बुलाते हैं, यहाँ की लोगों की सर्विस लेते हैं, तो यहाँ से उसको एक तो आर्थिक फायदा मिलता है, और दूसरा वो सांस्कृतिक रूप में यहाँ का साफा पहनते हैं, शेरवानियाँ पहनते हैं, तो वो उससे यहाँ के सांस्कृतिक रूप में भी शादियाँ करते हैं, तो ये दोनों चीज़ों का फायदा, संस्कृति भी बचेगी और आर्थिक रूप से फायदा भी होगा।
1: हाँ बिल्कुल, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो जैसलमेर के लोग हैं अब बड़े ही मेहमान नवाज हैं, और पर्यटक यहाँ ज़्यादा इसलिए भी आ रहे हैं कि यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। जब भी कोई यहाँ पर्यटक आता है उसको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बहुत हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के बात करें कि आप भी एक पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और पर्यटकों के लिए आपने एक बहुत सुंदर जो म्यूजियम बनाया है, उसके अंदर जो संरक्षण कर रहे हैं हमारी कला संस्कृति का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए। आकाशवाणी भी यही कार्य करता है, हमारी कला संस्कृति धरोहर संगीत सब कुछ वो संरक्षित करने का उन लोगों को मौका दे रहा है जो कि हमारे कलाकार हैं। तो अब मैं आपसे ये बात पूछूं, जो यहाँ का संगीत है, आकाशवाणी ने बहुत सारे कलाकारों को मौका दिया है, उसका पर्यटन के क्षेत्र में कितना योगदान है? कैसे पर्यटक झूम उठते हैं जब यहाँ पर उस संगीत को सुनते हैं?
0: देखिए यहाँ का संगीत जो है वो दिल को छू जाता है। देखिए अभी 2-3 दिन पूर्व में हमारे यहाँ के महान कलाकार तगाराम जी को पद्मभूषण से नवाजित किया गया, तो ये जैसलमेर के लिए गर्व की बात है।
1: बिल्कुल
0: यहाँ के जो कलाकार है वो विश्व स्तर पे अपनी पहचान बना रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को वहाँ बिखेर रहे हैं, और आप जब सुनिए, जब आप ये जब यहाँ के स्थानीय कलाकार जब उस ढोलकी और बाजे पर जब वो गाते हैं, तो अपनों वो उनके शब्द और उनकी राग अपने दिल को छू जाती है, क्योंकि अपन उनकी जड़ों से जुड़े और वो जड़ों तक पहुंचा देते हैं अपने को, तो ये संगीत विश्व प्रसिद्ध हो रहा है, और उसका कारण ये कि ये लोग अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़े हैं अभी तक।
1: और ये मुझे लगता है कि संगीत के क्षेत्र में ये तीसरा पद्मश्री अवार्ड है। इससे पूर्व जो मुझे याद है कि जो गाजी खां वर्मा को ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, और एक मुझे याद है कि जो हमारे थैयात के एक बहुत बड़े कमाचा वादक थे साकर खान जी, उनको भी ये अवार्ड मिला। और हम बात करें, हमारे यहाँ कलाकार बहुत हैं, ये तो संगीत के अलावा अभी और भी ये अवार्ड मिले हैं। राष्ट्रीय जो पुरस्कार की बात करें तो एक हमारे जो पुराने कलाकार हैं जिनका संबंध है, जो कि सोने चांदी का काम करते थे राजकीय यूँ कहें के परिवार के, उनको भी ये राष्ट्रीय अवार्ड मिला। और देखिए जो अवार्ड यहाँ जैसलमेर के लोगों को मिल रहे हैं, इससे भी जैसलमेर की पहचान पूरे भारत में फैल रही है। जिस प्रकार से तगाराम जी को ये पद्मश्री अवार्ड मिला, दिल्ली गए, उनके वीडियो देखे, कहाँ से हैं ये, जैसलमेर से, जैसलमेर भी कोई ऐसी जगह है, तो कहीं ना कहीं इनसे बड़ा यूँ कहें कि प्रभावित होते हैं लोग कि जैसलमेर की कला संस्कृति बहुत ही अच्छी है। अच्छा, आपसे हम एक प्रश्न जानते हैं कि जैसे कि रेडियो आपने बचपन में सुना होगा, तो किस तरह के प्रोग्राम आप रेडियो पे पसंद करते थे?
0: एक तो उसमें क्रिकेट कमेंट्री आती थी सबसे पहले, तो हम वो पसंद करते थे।
1: बिल्कुल
0: दूसरे अगर मैं नाम नहीं भूल रहा, एक माला भारत कोई स्वर्ण माला गीतों के आती थी,
1: हाँ,
0: फरमाइश
1: गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, फरमाइशी भी आते
0: के भी
1: बिल्कुल,
0: आते थे, और जो उसके वो गीत हम सुनते थे, और जब
1: और
0: 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी, तो सुबह सुबह ये देशभक्ति के गीत खूब हमारे दादाजी बजाया करते थे, तो हमने बचपन से इसमें पहले तो बचपन से क्रिकेट और फिर ये गीत, और कभी कभी जब कुछ नहीं होता तो कृषि कार्यक्रम भी आता था, वो भी सुन
1: वो
0: लिया
1: बिल्कुल
0: करते
1: अभी भी आ रहा है वो। और हम जैसलमेर की बात करें, देखिए हमारा जैसलमेर का जो आकाशवाणी शुरू हुआ 1994 में, और उसके बाद जो लोक संगीत है यहाँ का, हम बहुत लगातार एक पूरा आधा घंटे का प्रोग्राम रोजाना प्रसारित होता है, उसकी लोकप्रियता बहुत है। और पहले फरमाइशी भी होता था, बहुत सारे पत्र आते थे,

0: आकाशवाणी जैसलमेर का कितना योगदान मानते हैं यहाँ की कला संस्कृति के संरक्षण में और पर्यटन को बढ़ावा देने में?
1: देखिए, जब केवल दूरदर्शन और रेडियो ही था तो कुछ साधन नहीं थे, तो ये इसी के माध्यम से लोग दूर दराज के लोगों, जो जैसलमेर एकदम रिमोट एरिया था, यहाँ पे कुछ नहीं था, लोग बहुत दूर, लेकिन रेडियो वहाँ पे भी चलता था, तो आकाशवाणी के माध्यम से वो रात को दिन में जब ये गीत माला चलना, स्थानीय कलाकारों का आगे तक संगीत जब यहाँ से रिकॉर्डिंग होगी, जब नेशनल लेवल पे चलती थी, तो उसी के माध्यम से पूरे देश को पता चलता था कि इस तरह के कलाकार भी इस क्षेत्र में हैं। तो जैसलमेर आकाशवाणी का भी बहुत योगदान रहा है, और इस मरुस्थल क्षेत्र में जहाँ कोई पानी पीने को नहीं था, लेकिन रेडियो सुनने को जरूर मिलता था।
0: हाँ बिल्कुल, और देखिए रेडियो का जो प्रसारण, वैसे तो हम कहें कि अगर FM के माध्यम से सुनेंगे आप तो एक सीमित दायरा होता है, लगभग 60-70 किलोमीटर तक सुन सकते हो, लेकिन आज रेडियो आपके मोबाइल में ऐप के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप रेडियो सुन सकते हैं, जैसलमेर सुन सकते हैं, यानी जैसलमेर का व्यक्ति कहीं भी है दुनिया में तो अगर अपनी भाषा में प्रोग्राम, अपने लोक संगीत को सुनना चाहे तो AIR न्यूज ऑन AIR ऐप पर जाकर के आकाशवाणी जैसलमेर आराम से सुन सकता है। ये बहुत अच्छी पहल की आकाशवाणी ने, और हम लगातार अभी जो 90 गौरवशाली वर्ष पूरे किए आकाशवाणी ने, और हमारे जैसलमेर के बहुत सारी डिग्निटीज इस कार्यक्रम में आई हैं, और आज आपको मौका मिला, आपको दर्शकों से रूबरू कराया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जैसलमेर की कला संस्कृति एक बहुत ही अलग तरह की है और उसको संरक्षण की और ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी कला संस्कृति में जो पर्यटकों के कारण जो बदलाव आ रहे हैं उसको और संरक्षित कैसे किया जा सकता है?
1: देखिए, ये जिम्मेदारी स्थानीय लोगों के ऊपर है कि वो बाहर से आने वाले पर्यटकों से प्रभावित ना हो, यहाँ से जो पर्यटक जाए वो यहाँ की कला संस्कृति से प्रभावित होकर जाए। तो हमें ये जिम्मेदारी हमारे स्थानीय लोगों की, पर्यटन व्यवसायों की है कि हम उनको अपनी संस्कृति ट्रांसफर करें और उनको यहाँ से अच्छा संस्कार और उनको मेहमान नवाजी दे के भेजे, ताकि वो यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाए, और अगर संस्कृति को, उनकी संस्कृति भी अपन धारण करने योग्य है जो अच्छी है, तो अपन उसको इसमें समाहित करके उसको भी उसका उपयोग लें।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम अपनी संस्कृति को खुद ही बचा पाएंगे, और बहुत सारे पर्यटक यूरोप से लेकर के भारत के कोने कोने से आते हैं, और मैं तो यह चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है और भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और भी हमारी संस्कृति संरक्षित हो सकती है, तो जो कम से कम पर्यटकों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं वो हमारे स्थानीय जो वेशभूषा में उनसे मुलाकात करें, जैसे कि पर्यटक गाइड हैं तो अपनी वेशभूषा में जाएं, दुकानदार हैं तो वो भी अपने कपड़े पहने। तो मुझे वैसे तो काफ़ी पर्यटकों को देखा है कि जो यहाँ पर आते हैं हमारी पगड़ी को देख करके वो खुद पगड़ी धारण करते हैं, पगड़ी में फ़ोटो खिंचवाते हैं, यहाँ की ड्रेस हैं उनमें अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो सारे जो जैसलमेर के लोग हैं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनसे सीधे संपर्क में आते हैं, तो उनकी वेशभूषा हमारी अपनी होगी तो उससे पर्यटक जरूर प्रभावित होगा, और वो हमारे यहाँ के बहुत सारे कपड़े, कैप, ये जो हमारी पगड़ी खरीद के ले जाएगा, और अपनी भाषा में बात करें और अगर नहीं समझ में आ रही तो उनकी भाषा में बात कर सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। कुल मिला के बात करें तो ये जो कला संरक्षण की जिम्मेदारी हम जैसलमेर के स्थानीय लोगों पर है, हमारी संस्कृति बहुत महान है, हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उसको अपनाएं, वैसे ही कपड़े पहने और पर्यटक उनसे प्रभावित होकर जाएं, यही उम्मीद करते हैं। आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी गिरिराज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आकाशवाणी @90

अभी आप विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी 90। यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में फिल्म धड़कन का ये गीत। इसमें आवाज यदि है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

मुझे चैन न आए, कोई चाय जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल

हाल है, हाल मेरा बेहाल है, पूछो जरा पूछो क्या हाल है। हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल को गया, न जाने कहाँ दिल को गया।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, और इसी के साथ रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ 8:09। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल

0: पर हमें भेज सकते हैं।
1: संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कि अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देव रॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जन जन का रखे ध्यान।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजयी अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: तो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में 3 खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। एफएम बैंड 101.8 GHz पर रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

Oh,

Bakore bana la bana sare, jara sana thariyoru.

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रांतीय मासिक नाटक श्रृंखला, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: लेना है पूरी राष्ट्र जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आप

को लेना है और वो भी सुबह से पहले। ध्यान रहे आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी हैं। मेवाड़ की बेटी, मेवाड़ की बेटी। आलेख श्री कृष्ण कुमार टिक्कू, निर्देशक श्री मदन शर्मा। तो सुनिए नाटक मेवाड़ की बेटी।

0: कितना सुंदर हो, तो सिंह भला कितना सुंदर होगा।
1: माँ दुष्ट कंजी, तूने तो मुझे डरा ही दिया था।
0: मैं तो समझी थी कि माँ आ गई है ना, लेकिन माँ आ भी जाए तो क्या है, अपने मंगेतर का ही तो चित्र देख रही थी महारानी जी। और फिर अब तो विवाह में भी 4 ही दिन बचे हैं।
1: लेकिन हंसा, तू अभी से मुझे क्यों महारानी कह रही है?
0: क्यों ना कहूँ? याद है जब जयपुर के राज पुरोहित ने आपकी गोद भरी थी तब क्या कहा था?
1: क्यों कहा था?
0: आयुष्मान भव, राजकुमारी जी आपका विवाह जयपुर के श्रेष्ठ महाराज मानसिंह जी के साथ 2 माह बाद होगा, किंतु आप इसी क्षण से स्वयं को जयपुर की महारानी समझे। और राणा जी अब ये मेवाड़ की राजकुमारी नहीं, जयपुर की महारानी के रूप में आपके पास हमारी अमानत है। 2 माह बाद हम जयपुर नरेश की बारात लेकर आपसे अपनी अमानत लेने आएंगे।
1: अरे वाह वाह, तुझे तो कोई अभिनेत्री होना चाहिए था।
0: हाँ अभिनेत्री ही बन जाऊंगी।
1: अरे तो वाले अपनी महारानी को ले जाएंगे तो क्या काम रह जाएगा यहाँ पर।
0: हाँ अभी नहीं करके ही पेट पालना पड़ेगा मुझे अब।
1: तू कहे तो तेरे लिए भी कोई जयपुर वाला दूल्हा ही ढूंढ दूँ, फिर सदा ही मेरे साथ रहना।
0: क्यों जी, दूल्हा मिल जाएगा तो फिर हम आपके साथ क्यों रहेंगे भला? हम अपने दूल्हे के साथ ही रहेंगे क्या?

0: हम हाजिर हो सकते हैं महारानी जी?
1: भला मेवाड़ नरेश को भी अपने महलों में आने के लिए किसी की आज्ञा लेनी पड़ती है?
0: मेवाड़ नरेश तो हम हैं ही, लेकिन अपनी रानी के महलों में तो हम सिर्फ एक प्रेमी पुजारी ही हैं। अब देवी की आज्ञा के बिना भला पुजारी कैसे अंदर आ सकता है?
1: लगता है आज आप छिछोली करने पधारे हैं यहाँ। किंतु हमें अभी संध्या पूजन को जाना है भगवान एकलिंगनाथ के मंदिर में।
0: वो तो हम आपके हाथ में पूजा का थाल देखकर ही समझ गए थे रानी जी। हम तो ये कहने आए थे कि आज हमने कृष्णा को देखा तो तंग रह गए। आपने तो हल्दी चढ़ा चढ़ा कर हमारी बेटी को साक्षात वसंत ऋतु सा कर दिया है।
1: सच कह रहे हैं आप, कुंदन सी धमकने लगी है हमारी कृष्णा। जयपुर नरेश उसे देखेंगे तो स्वयं अपने भाग्य पर आश्चर्य करेंगे। राणा जी, दिन में 4 बार उसकी नजर उतारती हूँ मैं।
0: अच्छा, एक बात कही हम आपसे।
1: कहिए ना।
0: कृष्णा को देखकर हमें वो दिन याद आ गया जब हमने पहली बार अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया था। बिल्कुल आप पर गई है आपकी बेटी।
1: फिर शुरू कर दी।

0: ठिठोली।
1: अच्छा, नहीं करते ठिठोली।
2: हुजूर महामंत्री जी पधारे हैं, कहलवाया है इसी समय हुजूर के दर्शन करना आवश्यक है।
0: महामंत्री जी इस समय?
1: विवाह की तैयारी में ही कुछ बात करनी होगी, अब चार ही तो दिन शेष बचे हैं, कल से तो अतिथियों का आना भी शुरू हो जाएगा। सेवक,
2: आज्ञा महाराज।
1: तुम महामंत्री जी को भीतर भेज दो।
2: जो आज्ञा।
1: आप भी कुछ देर यहीं रुक जाइए महारानी जी, संभव है आपसे भी कोई परामर्श लेना हो।
3: मेवाड़ शिरोमणि की जय हो।
1: आइए महामंत्री।
3: प्रणाम स्वीकार करें महारानी जी।
0: आसन ग्रहण कीजिए महामंत्री जी।
3: आप कदाचित मंदिर पधार रही हैं।
0: हाँ, किंतु अभी समय है, आप चाहे तो अपनी बात कह सकते हैं।
3: जो आज्ञा। राणा जी, मैं
1: क्या बात है अजीत, तुम कुछ घबराए से हो।
3: अन्नदाता, बड़ा अशुभ समाचार है।
1: क्या? शीघ्र कहो अजीत, क्या हुआ है?
3: अन्नदाता, जयपुर नरेश।
1: क्या हुआ है जयपुर नरेश को?
3: अन्नदाता, जयपुर नरेश नहीं रहे।
0: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
1: ये तुम क्या कह रहे हो अजीत? क्या मानसिंह जी?
3: अन्नदाता, पता है जयपुर से दूत आया है, कुछ दिनों से जयपुर नरेश बीमार थे, कल रात अचानक ही।
0: भगवान, तूने ये तो मेरी कृष्णा कैसे सह पाएगी? क्या होगा?
1: स्वयं को संभालिए रानी जी।
0: कैसे संभालू? घर में हल्दी चली बेटी बैठी, चार दिन बाद विवाह के लग्न है, ऐसे समय में ये बच पात। मैं
1: ये समय रोने का नहीं महारानी, ये समय है विचार करने का। सेवक, ये नगाड़े और शहनाइयां बंद करवा दो, महलों पर सजावट की सारी रोशनियां बुझवा दो, जनाने महलों में कहलवा दो कि ये गीत नृत्य सब बंद कर दिए जाए।
3: ये तो बड़ा अनर्थ हो गया अजीत, आपका दुख मैं समझ रहा हूँ। राणा जी, ये आप ही का कलेजा है जो ये वज्रपात झेल कर भी आप अपना धैर्य बनाए हुए हैं,
1: और हम कर भी क्या सकते हैं।
0: किंतु राणा जी, एक और कठिन समस्या है।
1: एक नहीं, अब तो समस्याएं ही समस्याएं हैं हमारे सामने।
0: आप समझे नहीं, बेटी को हल्दी चढ़ चुकी है, अब उसे घर में बिठाए नहीं रखा जा सकता। विवाह का जो मुहूर्त है उस पर उसका विवाह करना ही होगा।
1: क्या कह रही हैं आप?
0: आपके कुल की यही रीत है राणा जी, एक बार हल्दी चढ़ जाने पर लड़की का विवाह निश्चित मुहूर्त पकड़ना होता है। हल्दी चढ़ी बेटी पिता के घर नहीं रह सकती।
1: किंतु रानी जी, लगने में तो केवल चार दिन शेष है, भला इतने कम समय में हम राजकुमारी के लिए योग्य वर कहां से लाएंगे?
3: अन्नदाता, आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं।
1: आप भी कुछ सलाह दीजिए मंत्री जी, हमारी तो समझ में नहीं आता कि अब क्या करें।
3: अन्नदाता, राजकुमारी जी के लिए जयपुर के अलावा जोधपुर नरेश का भी तो प्रस्ताव आया था।
1: हाँ, राजा मकरंद सिंह
3: जी।
1: हाँ, उनका भी प्रस्ताव आया था, बल्कि वे तो इस संबंध के लिए बहुत उत्सुक भी थे।
3: और जयपुर नरेश का प्रस्ताव मिलने के बाद आपने अभी तक जोधपुर नरेश को हाँ या नहीं का कोई भी जवाब नहीं दिया।
1: हाँ
3: अन्नदाता, इस समय वही आपकी समस्या का समाधान है।
1: आपका मतलब है कि?
3: हाँ मेवाड़ शिरोमणि, जयपुर के बाद
4: जोधपुर से अच्छा कोई संबंध राजकुमारी और मेवाड़ के लिए नहीं हो सकता।
1: तुम ठीक कहते हो अजीत सिंह। आपका क्या विचार है महारानी जी?
0: हाँ, यही उचित होगा। आपने तो हमें उबार लिया मंत्री जी।
1: महामंत्री
4: जी,
1: हमारा पत्र लेकर दूत को जोधपुर रवाना करो। हम राजा मकरंद सिंह को बारात लेकर निश्चित मुहूर्त पर पहुंचने का निमंत्रण भेजेंगे। राजाओं की तैयारी में समय नहीं लगता। दूत से कहना रातों रात हमारा पत्र जोधपुर नरेश तक पहुंचाए और उनका जवाब लेकर कल तक यहां वापस लौटे।
4: जो आज्ञा अन्नदाता, आप पत्र लिखिए, मैं सब प्रबंध करके लौटता हूं।

0: मंत्री जी।
1: जी महाराज।
0: आश्चर्य तो होगा जोधपुर नरेश को ये देखकर कि हम स्वयं नगर की सीमा पर उनकी बारात के स्वागत को आए हैं।
1: ऐसा करके आपने उनका सम्मान बढ़ाया है महाराज, वे निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे। लगता है बारात आ गई है अजी।
2: जी महाराज, वो उधर घुड़सवार नजर आने लगे हैं महाराज।
0: स्वागत की तैयारी तो सब हो गई है ना?
1: आप निश्चिंत रहिए अन्नदाता।
3: ये तो बारात नहीं कोई सेना नजर आती है अजीत। भला जोधपुर नरेश
1: ये मुझे भ्रम हो रहा है या
3: क्यों? क्या हुआ अजीत?
2: इन सैनिकों के सिर पर जोधपुरी स्टाफ भी नहीं है राणा जी। ये तो
3: हमने ध्यान ही नहीं दिया था।
0: अजीत
1: जी महाराज,
0: ये साफे तो जयपुर रियासत की पहचान है।
1: ये निश्चय ही जयपुर रियासत की सेना है राणा जी।
0: जयपुर की सेना? लेकिन क्यों?
1: वो देखिए एक हाथी पर जयपुर राजवंश का ध्वज भी लगा है राणा जी। इसका मतलब है कि स्वर्गीय मान सिंह जी के छोटे भाई और अब जयपुर नरेश राजा मुकुंद सिंह जी स्वयं भी सेना के साथ तैयार रहे हैं।
0: लेकिन उन्हें तो हमने निमंत्रण भी नहीं भेजा था।
1: कुछ घुड़सवार उधर भी आ रहे हैं राणा जी, और सबके आगे स्वयं जयपुर के दीवान जी है।
3: जाने क्या इच्छा है भगवान एकलिंग नाथ की।
0: आप आगे जाकर दीवान जी का स्वागत कीजिए और उन्हें यहीं हमारे खेमे में ले आइए।
1: जो आज्ञा राणा जी।
0: और जब भी जोधपुर वालों की बारात पहुंचे आप उनका स्वागत करें, उनके यहीं विश्राम का प्रबंध करें और हमें तुरंत सूचना दें।
1: जो आज्ञा अन्नदाता।
4: जयपुर के दीवान का प्रणाम स्वीकार करें मेवाड़ जी।
5: पधारिए, मेवाड़ में आपका स्वागत है।
4: मैं जयपुर महाराज का एक आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ राणा जी।
5: आपको जो भी कहना हो शीघ्र कहिए दीवान जी। जोधपुर नरेश की बारात भी किसी भी क्षण आ सकती है।
4: उस बारात को वापस लौटा दीजिए मेवाड़ नरेश।
5: क्या क्या कह रहे हैं आप?
4: जयपुर नरेश का यही संदेश है कि आप जोधपुर वालों की बारात वापस लौटा दीजिए।
5: बारात वापस लौटा दें? हमसे यह कहने का साहस कैसे हुआ आपका? आपके राजा को हमारे परिवार के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है?
4: ये अधिकार आप ही ने जयपुर नरेश को दिया है हुकुम।
5: हमने अधिकार दिया है? हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं दीवान जी।
4: आप अगर क्रोध छोड़कर शांति से मेरी बात सुनें तो सब समझ जाएंगे। फिर आप स्वयं ही फैसला कीजिएगा कि आपको जोधपुर की बारात लौटानी चाहिए या नहीं।
5: लेकिन आप कुछ कहिए तो सही।
4: अर्ज करता हूं, राजकुमारी कृष्णा का संबंध आपने जयपुर नरेश मानसिंह जी से किया। हमारे राजपुरोहित ने स्वयं आकर उनकी गोद भरी और उन्हें जयपुर की महारानी घोषित किया। ठीक है ना राणा जी?
5: ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन मानसिंह जी के स्वर्गवास के बाद इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
4: अर्थ क्यों नहीं रह जाता राणा जी? रियासतों के विवाह संबंध व्यक्तियों के बीच नहीं, दो राजघरानों के बीच होते हैं, दो रियासतों के बीच होते हैं। राजा मानसिंह के निधन से जयपुर की राजगद्दी पूर्ण नहीं हो गई। आज राजा मुकुंद सिंह जयपुर नरेश हैं और अपने राजपुरोहित के वचनों के अनुसार निश्चित लग्न मुहूर्त पर जयपुर की महारानी को, जो आपके पास हमारी अमानत है, लेने आए हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं राणा जी?
5: लेकिन हमने जो जोधपुर नरेश को निमंत्रण देकर बुलावा भेजा है।
4: क्षमा चाहता हूं, ये आपकी गलती थी। हम भी जानते हैं कि हल्दी चढ़ी राजपूत कन्या पिता के घर नहीं रह सकती। हम भी क्षत्रिय हैं, इसीलिए राजा मान सिंह की मृत्यु के शोक के बावजूद सही मुहूर्त पर बारात लेकर आए हैं।
3: कलिंगनाथ, अब क्या होगा?
4: जयपुर नरेश की बारात खाली हाथ नहीं लौटेगी। हमारी महारानी को हमारे सामने आप किसी और को सौंपें, इससे पहले मेवाड़ की धरती को अपने ही पुत्रों के खून से नहाना होगा। आपकी बेटी जयपुर की इज्जत है और इसकी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा, चाहे वह किसी का भी हो। मैं अब आज्ञा चाहूंगा मेवाड़ नरेश। लग्न का समय कल रात का है, तब तक हमारी सेना आपके नगर की सीमा से बाहर यहीं रहेगी। आशा है आप मेरे निवेदन पर विचार कर कल सुबह तक हमें अपना जवाब भिजवा देंगे। जय भवानी।
0: जोधपुर की बारात आ गई है महाराज। जोधपुर की बारात आ गई है?
3: हाँ हाँ हाँ। सुनो अजीत।
0: जी महाराज।
3: तुम बारात के यही ठहरने का प्रबंध करो। कह दो नगर प्रवेश का कल सुबह से पहले अच्छा मुहूर्त नहीं है, हम महलों में जा रहे हैं, तुम वहीं आओ।
0: जो आज्ञा महाराज।

0: अब क्या होगा राणा जी? हे प्रभु, ये कैसा संकट आ पड़ा है हम पर। इधर जोधपुर की बारात तैयार खड़ी है, उधर जयपुर की सेना, अब हम क्या करें? आप ही कुछ कहिए ना मंत्री जी।
1: मैं क्या कहूँ महारानी जी, मैंने तो जोधपुर और जयपुर दोनों ही राजाओं के हाथ जोड़कर अपनी व्यवस्था बताई, पर दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। जोधपुर नरेश कहते हैं कि स्वयं महाराजा ने उन्हें विवाह का निमंत्रण देकर बुलाया, अब उनकी चढ़ी बारात के सामने कोई दूसरा मेवाड़ की राजकुमारी को ब्याह कर ले जाए, इससे पहले उनका हर सिपाही अपना सिर कटा देगा। वे यहां से लौटेंगे तो राजकुमारी को लेकर, अन्यथा लाशों का ढेर लग जाएगा। यही दिन जयपुर नरेश की भी है।
0: लेकिन मैं अपनी एक बेटी को दो बारातों में कैसे बांटूं? आप कुछ क्यों नहीं बोलते राणा जी? कल किसे और क्या जवाब देंगे आप?
1: जवाब? हाँ, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सेवक,
2: हाजिर हूँ दादा।
1: राजकुमारी को संदेश भेजो कि हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं।
0: आप कृष्णा को बुलवा रहे हैं?
1: हाँ रानी जी, अब हमें क्या करना है इसका फैसला कृष्णा ही करेगी।

0: आओ बेटी।
1: यहाँ आओ बेटी। अरे माता जी और मंत्री काका भी रही है।
0: जीती रही है राजकुमारी जी।
1: मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी?
0: बेटी आज तुम्हें आज्ञा देने नहीं, एक गंभीर समस्या पर तुम्हारी सलाह लेने को बुलाया है। ये केवल हमारे परिवार ही नहीं, पूरे मेवाड़ और पूरी राजपूत जाति के लिए संकट की घड़ी है। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो और फिर बताओ कि हमें क्या करना है।
1: जी पिताजी।
0: सुनो बेटी, हमने जब जयपुर से आपके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था तब ये सोचा था कि आपको तो अच्छा वर और घर मिलेगा ही, साथ ही मेवाड़ पर छाए संकट के बादल भी छट जाएंगे।
1: मेवाड़ पर संकट?
0: हाँ बेटी, मुगलों से लड़ते लड़ते मेवाड़ अंदर ही अंदर इतना जर्जर हो चुका है कि हमारी पड़ोसी रियासतें भी हम पर गिद्ध दृष्टि डालने लगी थी। हमारी बची खुची सेना बहुत दिनों तक मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, किंतु यदि जयपुर जैसी ताकतवर रियासत से हमारे संबंध हो जाते तो फिर किसी का हमारी ओर आंख उठाने का साहस भी नहीं होता।
1: ये तो आपने ठीक ही विचार किया पिताजी।
0: पर ऐसा हुआ नहीं। विवाह के 4 दिन पूर्व मान सिंह जी का स्वर्गवास हो गया।
1: क्या?
0: हाँ। और कुल की रीत निभाने के लिए हमें आपके विवाह का निमंत्रण जोधपुर नरेश को भिजवाना पड़ा।

0: अब स्थिति यह है कि मेवाड़ की राजकुमारी एक है और उनसे ब्याहने को दो बाराते दरवाजे पर खड़ी हैं। कल तुम्हारा लग्न है और कल सुबह हमें उनमें से एक को बारात नगर में लाने को आमंत्रित करना है। हम चाहे जयपुर वालों को लोटे या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी। तीनों ही रियासतों के सैकड़ों राजपूतों की लाठों का ढेर लग जाएगा। यहां से तुम्हारी डोली जो भी ले जाएगा उसे अपनी ही कौम के खून की भरी दलदल से होकर गुजरना पड़ेगा। हजारों राजपूत बालाएं विधवा हो जाएंगी तुम्हारी मांग के सिंदूर के लिए। असंख्य बच्चे अनाथ हो जाएंगे तुम्हारा घर बसाने के लिए। और मेवाड़ का क्या होगा फिर?
1: नहीं नहीं पिताजी नहीं। यदि मेरे विवाह मंडप में मंगल गीतों की जगह विधवाओं का क्रमण गूंजे, यदि मेरी डोली हजारों वीर राजपूतों की लाशों को लांग कर गुजरे, तो धिक्कार है इस विवाह पर। सिर्फ मेरे कारण इतना विनाश? नहीं नहीं पिताजी नहीं नहीं नहीं नहीं। आप दोनों राजाओं से कह दीजिए कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी।
0: बेटी, ये भी तो संभव नहीं है। अब हल्दी चढ़ी कन्या घर में बैठी है और दरवाजे पर बारात खड़ी हो तो विवाह नहीं चलेगा। हम कहे भी तुम्हें नहीं मानेंगे।
1: फिर क्या निर्णय लेंगे आप?
0: निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राजपूत जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आपको लेना है। ध्यान रहे, आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी है। मेवाड़ की बेटी

0: अरे इतने चिंतित क्या हो राजकुमारी? हाँ
1: कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे हमको। अच्छा घंटे भर बाद आना।
0: क्यों आज्ञा?
2: हम चाहे जयपुर वालों को नोते हैं या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी।
0: यहाँ
2: से तुम्हारी
0: कारण
3: दाता, कुछ न कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा आपको।
2: निर्णय तो राजकुमारी ने ले ही लिया होगा।
4: महारानी अनर्थ हो गया, महारानी अनर्थ हो गया।
0: क्या हुआ बताना, क्या हुआ?
4: राजकुमारी, राजकुमारी
0: क्या हुआ? राजकुमारी को
4: राजकुमारी ने विष पीकर प्राण दे दिया।
2: रोना बंद कीजिए रानी जी, आपकी बेटी ने, मेवाड़ की बेटी ने अपना बलिदान देकर राजपूतों के गौरवमय इतिहास को गंगा की पवित्रता दी है।
4: मेरी बेटी,
2: धैर्य रखिए रानी। अजीत सिंह आज्ञा मेवाड़ रहे, आप अभी जाकर जयपुर और जोधपुर नरेशों को स्वयं ये कहिए कि हमारी बेटी के विवाह मंडप में तो हम उनमें से किसी को भी नहीं बुला सकते। अब किंतु हमारी बेटी के अंतिम संस्कार में वे दोनों ही आमंत्रित हैं। जाइए जाइए, अब मेवाड़ की धरती खून से नहीं नहाएगी, नहीं नहाएगी।

0: मेवाड़ की बेटी। अभी आप श्री कृष्ण कुमार टिक्कू का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे श्री मदन शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे श्री दीपक जोशी, श्रीमती पूनम भू, श्री रमेश सनाठे, श्री अतुल्य कीर्ति व्यास, श्री राजेश चड्ढा, कुमारी करुणा कुमावत और श्रीमती ममता सुखवाल।
1: इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर।
2: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

1978 में राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये फिल्म अपने मधुर गीतों के लिए चर्चित रही। इस फिल्म के गीतकार और संगीतकार एक ही थे, उनका नाम था रविंद्र जैन।

अभिनेता सचिन और रंजीता के मुख्य किरदार में बनी यह एक रोमांटिक हिंदी ड्रामा फिल्म है। फिल्म के निर्देशक थे हिरेन नाग। आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं इस फिल्म के सभी मधुर तराने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी का। जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन समाचारों को हम दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।

0: कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल

0: को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के साथ नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। हमारी प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।
3: Borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government.